फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है उन्होंने कहा कि उद्योग जगत केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा इस दौरान

0: मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, जीवन में पहली सफलता की बात रुकी नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 317। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 5। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। 10 बॉम्बे टॉकीज में पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत सुनेगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग अवंतिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। ग्यारह बजे विविधा में प्रस्तुत होगा सत्येन कप्पू दुर्गा खोटे चित्र भारती पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नाक में, 3 मन चाहे गीत, प्रस्तुत करता है तेजस श्री कांबले।

दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा भाग, महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। शाम 4 पिटारा में उजाले उनकी यादों के। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा। इस बातचीत का पहला भाग आज प्रस्तुति अनुश्री पाठक के। शाम 5 छाया गीत।

शाम 5:30 पर तराने नए पुराने 6:35 पर संध्या रंजन 6:45 पर संगीत सरिता आपको फिर से याद दिला दे श्रृंखला सुनेगा ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 5 कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुल उत्सव महाराज प्रस्तुति छाया गांगुली की शाम 7:00 सैनिकों की शौर्य गाथा महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा सुनेगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत आलेख स्वर संगीता श्रीवास्तव का प्रस्तुति तेजश्री कांबले की 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज हवा महल में रात 8:00 सुनिए झलकी चिट्ठी लेखक सुनील हेत्री अब्राहम निर्देशक गुरमीत रामल मीत पर चित्रलोक 9:00 आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर 10:00 छाएगी 10:30 पर ढलती जाहिरात और 11:00 सुनेगा विविधा आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 317

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 317। आज आपने सुना।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज संगीत सरिता में जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। प्रत्येक राग को गाने के लिए उसका वादी संवादी न्यास और चलन पर ध्यान देना होता है। यदि राग की प्रकृति चपल है तो उसका विस्तार उसके अनुसार करना होगा। यदि राग गंभीर है तो उसका विस्तार जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए, अपितु बहुत धैर्यपूर्वक उसकी बढ़त करनी चाहिए। अगर राग गंभीर होने के साथ करुण रस प्रधान है तो उसकी बढ़त का ढंग अलग होता है। इसमें मैं बड़े ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि झूमरा ताल में निबद्ध है।

0: श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं प्रस्तुत करता थे जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियों और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के संबंध में कहा है कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
1: अगर किसी को नाम नहीं मिल रहा है या किसी को जीवन नहीं मिल रहा है, उसके सामने भी नाम लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट पर है। आप ये भी मान लीजिए मेरा आपको नोटिस भी आया, तो नोटिस इस तरह मैनर में जाएगी, क्योंकि मेरी इनारों के लिए होती है उसका पेज लिखा हुआ है। एक दिन में लिमिट होती है कि वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड मैनर में नोटिस मिलेगा और वैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्प्ले होने लगे, उसी हिसाब से सक्सेसफुल नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है और उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए

अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। यश डबास अध्यक्ष, लिया छावरे सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकी ने जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा है कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये छात्र कल्याण के प्रति एबीवीपी की प्रतिबद्धता को लेकर युवाओं में दृढ़ विश्वास बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ये जीत विकसित भारत के लिए योगदान के प्रति विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जापान ने 20वीं एशियाई खेल में भारतीय निशानेबाज एलेवेनिल वलारिवन, सोनू मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी में मुकाबले में उतरेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहे जन कल्याणकारी आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को गांधी सागर अभयारण्य के जंगलों में करेंगे विमुक्त। और एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया। इसके माध्यम से केंद्र व राज्यों के 17 से अधिक अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाप्त कर एक पारदर्शी और एकीकृत व्यवस्था बनाई गई, जिससे कर पर कर की समस्या खत्म हुई और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हुईं। डिजिटल GST नेटवर्क से कर चोरी पर लगाम लगी और राजस्व संग्रह में भारी बढ़ोतरी हुई। GST परिषद के जरिए केंद्र और राज्यों ने मिलकर देश को एक एकीकृत आर्थिक बाजार में बदल दिया है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन कल्याणकारी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अशोकनगर के जिला आयुर्वेद कार्यालय सहित 11 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं मंदसौर में भी इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ग्राम मिंडल की आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। वहीं वड़नगर से वाराणसी तक निकलने वाली सेवा संकल्प यात्रा एवं जल सेवा संकल्प यात्रा का झाबुआ जिले में प्रवेश हुआ। सतना में आयोजित सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिव्यांगजनों को 590 मोटराइज्ड ट्राई

0: साइकिल एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया। वहीं ग्वालियर के स्कूलों में मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बच्चों के साथ ग्वालियर में फिल्म भी देखी। इसके अलावा मुरैना के कैलारस महाविद्यालय में भी विद्यार्थियों के लिए पोस्टर एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। 15 से 29 साल के युवाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में युवाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को झूठ की गूंज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात की है। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2002 से 2003 तक स्कूलों में 16% ड्रॉप आउट था, जो अब जीरो है। लगभग 1,00,000 के आसपास पदों की भर्ती हमारी माध्यमिक भर्ती बोर्ड और PSC के माध्यम से हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता CCB2 को गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर नीमच के जंगलों में विमुक्त करेंगे। इसके साथ ही गांधी सागर में चीतों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी, जिसमें 2 नर और 2 मादा शामिल हैं। 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाई गई इस मादा चीता ने कूनो के माहौल में खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। कूनो के बाद अब उसे गांधी सागर स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां वह पहले से मौजूद चीते प्रभाष, पावक और धीरा के साथ रहेगी। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट चीता को और मजबूती देगा। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत सुशासन और पारदर्शिता को जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव लगातार प्रदेश के दूरदराज के इलाकों का मैदानी निरीक्षण कर रहे हैं। अपने निरीक्षण दौरों के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सीमा से लगे डिंडौरी जिले के गड़ासरी पटरिया मार्ग का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की और आधुनिक ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर बार्स तकनीक के उपयोग का निरीक्षण कर इसके प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। इसके पूर्व प्रबंध संचालक ने रायसेन में निरीक्षण के दौरान जनविश्वास शिविरों के जरिए ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही पौधरोपण और जल संरक्षण के तहत बनाए जा रहे रिचार्ज बोर व लोक कल्याण सरोवरों के कार्य की समीक्षा कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन के अनुरूप प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कृषि कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार योजनाएं संचालित कर रही है। इस महाअभियान के तहत कुछ जिलों में प्रशासनिक स्तर पर सराहनीय कार्य देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की अगस्त 2026 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विदिशा जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42.95 अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देशन और प्रशासनिक कसावट के चलते जिले में कृषि कल्याण योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन बेहद प्रभावी ढंग से हो रहा है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज महिला क्रिकेट सेमीफाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। वहीं भारत की टेकबॉल खिलाड़ी क्विम्सी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना सकामोतो से खेलेंगी, जबकि भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलावीरन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। वहीं पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा के एक निजी विद्यालय में गणेश उत्सव पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा के साथ साथ सामाजिक परंपराओं और संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा खंडवा में होमगार्ड सैनिकों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय अल्पविराम कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के 81.48% संतुष्टिपूर्ण समाधान के लिए ए ग्रेड मिला है। झाबुआ के रामा और खरडूबड़ी के दो विद्यालयों में शैक्षणिक अधोसंरचना एवं सुविधाओं के विकास के लिए 319.58 लाख रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र में फोरलेन हाईवे पर ट्रक की टक्कर से ट्रॉली सवार एक महिला और बच्ची की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। पन्ना जिला जेल में कल बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान 64 गाइडों ने जैव विविधता और वन्य जीव व्यवहार की बारीकियां सीखी। डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने समीक्षा बैठक के दौरान सभी निर्माण एजेंसियों को तय समय सीमा के भीतर विकास कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सागर संभागायुक्त दिलीप कुमार ने छतरपुर के पाठापुर गांव का भ्रमण कर केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों से संवाद कर मुआवजा एवं पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को सुलझाया। शहडोल पुलिस ने फर्जी और संदिग्ध सिम बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन फास्ट 2.0 चलाकर छापेमारी की, जिसमें ब्योहारी में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धार के मगजपुरा स्थित जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 23 सितंबर को 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं काढ़ा वितरण शिविर लगाया जाएगा और शासकीय आईटीआई मुरैना में आयोजित रोजगार कैंपस में 18 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रहे जन कल्याणकारी आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री आज बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता को गांधी सागर अभयारण्य के जंगलों में करेंगे विमुक्त। और एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगा मुकाबला। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में हमदर्द फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे प्रेम धवन, संगीतकार थे अनिल विश्वास।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन

0: हेमरेज 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ठोकर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज थी, मजाज लखनवी के बोल थे और सरदार मलिक का संगीत था। इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने रामी धोबन फिल्म से लिया था। गीता रॉय की आवाज थी, राम मूर्ति चतुर्वेदी की रचना और हीरेन बोस की तर्ज थी। और इसी अभी जो गीत आपने ठोकर फिल्म का सुना, इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत। इस गाने में आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: आपकी एक रसम फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की ये रचना, आपने सुनी राहुल देव वर्मन की तर्ज थी। अब लीजिए सुनिए दोस्त फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में। इसे आनंद बख्शी ने लिखा है।
1: कैसे जीते

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हमशक्ल फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, आर टी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हे राही प्यार की कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

आइए फिर स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में। अभी आप ये गीत जो सुन रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीत गुलशन बाबरा का।

0: हाथ की सफाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में. गीत गुलशन बाबरा का था. संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी.
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई.
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर.
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग. रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग.
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी.
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए. 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया.
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
3: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं. 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है.
4: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
3: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देते हैं.
4: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र.
3: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर आने लगते हैं.
4: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती.

कसौटी फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए कागज की नाव फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और मनहर की आवाजें हैं, नक्श लायलपुरी की रचना, सपन जगमोहन की धुन।

कागज के नाव फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मनहर की थी, रचना नक्श लायलपुरी की थी, संगीतकार थे सपन जगमोहाने सी। गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबी ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
4: वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। जीएसटी दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
5: जो हाल ही में जीएसटी का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, तो यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में। तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
4: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
6: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
4: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
8: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है, तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक तो मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है। तो हियरिंग AR के यहाँ पे होनी है, उस पर प्रेस लिखा होता है, एक दिन में एक मिनट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में

0: आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
1: We have to continuously be watchful of the
2: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे। हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सेंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी किउनसी डिसोजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। यह नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर ABVP और NSUI का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, ABVP ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सराय का लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तहरीर

बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें विशाल मिश्रा तुलसी कुमार की थी, मनोज बंदशेर के बोल थे विशाल मिश्रा की तर्ज थे। ड्रीम गर्ल टू फिल्म का गीत लीजिए, अब सुनिए छुपे नौटियाल की आवाज में, गीतकार और संगीतकार हैं आरको।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक।
3: अरे ओरे हे।
2: संगीत के साधक।
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो है संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अलबेला सजन आयो रे बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी शशि सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित और साथियों के। संगीतकार थे आदित्य देव। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब बारी है एक ब्रेक की।

स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से। भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत लीजिए सुनिए।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल के और साथियों की आवाजें थी, गीतकार और संगीतकार थे अमाल मलिक प्रीतम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

आज है वर्ल्ड क्लीनअप डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस। 20 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिवस स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए हमें प्रेरित करता है। साथ ही कचरे की समस्या से निपटने के लिए हमें प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सफाई सिर्फ अपने घर या कार्यस्थल की सफाई तक सीमित नहीं है। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, जल स्रोत, समुद्र तट और हमारे आसपास का पूरा पर्यावरण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, हमारी साझा जिम्मेदारी है। अनियंत्रित कचरों से जल, मिट्टी, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। ये हमारे सामने एक गंभीर चुनौती है। इसका समाधान केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। कचरा फैलाने वाला हर व्यक्ति कचरे को साफ करने में अपनी उचित भूमिका निभाए, ये काफी हद तक निदान हो सकता है।

घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, कागज आदि जैसे योग्य वस्तुओं का रिसाइकल पुनः उपयोग करना, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना, सार्वजनिक स्थलों को गंदा ना करना और इसी

बच्चों को अवश्य सिखाएं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा परिसर में आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते और सुनते हैं एक और गाना। ये गुलाब गैंग फिल्म का गीत।

माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाजों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी।

0: मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो तुम गाना ही गाओ
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

0: तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत आप कृष्णा की आवाज में सुन रहे थे। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और कृष्णा ने धुन बनाई थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस है। हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के महत्व को रेखांकित करने और विद्यार्थियों के जीवन में शारीरिक गतिविधियों, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्वविद्यालय ज्ञान और बौद्धिक विकास के साथ साथ विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल के मैदान में सफलता और असफलता दोनों ही का सामना विद्यार्थी को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।

आज के जीवन शैली में शारीरिक निष्क्रियता काफी बढ़ गई। कहा जाए तो ये प्रतिबद्धता भी है, जैसे लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करना, डिजिटल उपकरणों का अधिक उपयोग, व्यायाम के लिए समय न निकाल पाना स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालयों में खेल सुविधाओं और नियमित शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और भी आवश्यक हो जाता है।

विश्वविद्यालय में खेलों का महत्व सिर्फ प्रतियोगिताओं और पदक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को टीम भावना, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण देते हैं। विद्यार्थी प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का संदेश स्पष्ट है कि शिक्षा और खेल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों को खेल के मैदान, प्रशिक्षित प्रशिक्षक और विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इस दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं, फिटनेस गतिविधियों और विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में खेलों के प्रति उत्साह और रुचि पैदा होने के साथ साथ संतुलित और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है। चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

चकते इंडिया फिल्म का गीत हेमा सरदेसाई की आवाज में आप सुन रहे थे। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नक्श अजीज अंतरा मित्रा की आवाजी थी, मयूरपुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल, सोना महापात्रा।

श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज़ों में आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। आज फिल्मकार महेश भट्ट का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर केंद्रित होगा। फिल्मकार महेश भट्ट पर आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुत करता है विजय दीपक छिब्बर। सुनना ना भूलिएगा।

लक्ष्मी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ें थी शशि डीजे खुशी के, गीतकार थे गगन आहूजा और संगीतकार शशि डीजे खुशी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत, सविता सिंह को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

महेश भट्ट, फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहाँ मिला नहीं ज़्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम की किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मेरे भाग्य ठीक थे। जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन खत्म हो जाए तो बाहर आके जरा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहाँ एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था। उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट। और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति। उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी, विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धक्के खाए यहाँ वहाँ, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए। मंजिलें और भी शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई, फ्लॉप हो गई। नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी। विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाई डे एक राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years wasted। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था, रजनीश एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई अर्थ।

अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद दिस फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं, तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी कैओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किससे कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विथ सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और कास्ट जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान सा अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेज खत्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये हालांकि ये फेज मेरी जिंदगी में ज्यादा लंबा नहीं था, 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमेरा ही प्यार के जो कामयाब फिल्में थी, मगर ये जब पीछे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स वो इमोशंस जिसके लिए मैं इसके कारण मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा है, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेसिव वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं उस कंफ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूँ। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूँ, मानता रहा हूँ। और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: प्यारे का।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथा वस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई राज 3।
1: लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।
0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छब्बर ने।
2: आज के फनकार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में होगा।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सिवनी जिले के लिए ये महीना मिला जुला रहा और कृषि, जनसेवा, धार्मिक उल्लास तथा उपलब्धियों से भरा हुआ एक संदेश लेकर आया। एक तरफ जहां मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों को चिंता और उम्मीद दोनों के बीच खड़ा किया, वहीं पर प्रशासनिक अभियानों और सांस्कृतिक उत्सवों से जिले में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। जिले के लिए यह महीना कृषि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। जिले में हुई बेहतर बारिश के चलते किसानों द्वारा बोई गई खरीफ फसल की पैदावार काफी अच्छी होने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर शेखर सिंह बघेल के अनुसार इस वर्ष 158,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई की गई है, जबकि 140,000 हेक्टेयर में मक्का बोया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 36,000 हेक्टेयर अधिक है। कृषि वैज्ञानिकों ने लगातार हो रही बारिश को सोयाबीन और मक्का की फसल के लिए नुकसानदायक तथा धान के लिए लाभदायक बताया है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर निखिल सिंह और वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ फसलों का निरीक्षण कर किसानों को कीट एवं व्याधियों के नियंत्रण के लिए समसामयिक कृषि सलाह दी गई है। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवाओं को समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ बीते 7 अगस्त को किया गया, जो 8 जनवरी 2027 तक संचालित होगा। कलेक्टर नेहा मीना ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाना है, जिसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से फील्ड में रहकर जनसंवाद, निरीक्षण एवं समस्याओं का मौके पर निराकरण कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, आयुष्मान कार्ड, समग्र ईकेवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सीएम हेल्पलाइन, राशन दुकानों, स्वास्थ्य संस्थानों और स्कूलों की सघन समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही उद्यम संवाद के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी बीच प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा का सिवनी आगमन हुआ। उन्होंने शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम का निरीक्षण कर छात्राओं से संवाद किया और पढ़ाई और अनुशासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 150 चयनित आपदा मित्रों के लिए जनपद पंचायत सभागृह में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें होमगार्ड टीम के द्वारा आपदा प्रबंधन नियमों और प्राथमिक राहत कार्यों की जानकारी दी गई। वहीं कुछ दुर्घटनाओं में अगस्त के दूसरे सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मृत्यु हुई है तथा 22 लोग घायल हुए हैं। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये महीना काफी सक्रिय रहा। सिवनी में गणेशोत्सव पर्व अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की अपील का असर ये रहा कि लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी की गणेश मूर्तियों को प्राथमिकता दी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण भी किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा जारी जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत बीते अगस्त माह के दूसरे सप्ताह से अब तक लगभग 900 आवेदनों पर सुनवाई कर अवैध कब्जे, फसल क्षति मुआवजा, पेयजल, आवास व मजदूरी भुगतान जैसी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ जिले में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के साथ बीते दिनों किया गया। बैनगंगा नदी उद्गम स्थल मुंडारा, परतापुर, शहीद स्मारक टूरिया, छपारा घाट, देवघाट और आधे गांव किला सहित प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल दियों की रोशनी से जगमगा उठे। जिले के विभिन्न अंचलों में भी आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित किया गया। जन भागीदारी से इस अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के साथ ग्रामों, नगरी वार्डों, सार्वजनिक स्थलों और घरों को भी जोड़ा गया। जिले में स्थानीय स्तर पर नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और विभिन्न वर्गों को अभियान से जोड़ते हुए सहभागिता सुनिश्चित की गई। सांस्कृतिक और खेल जगत की खबरों की बात करें तो जिले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरा आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के कवियों ने भाग लिया। वहीं खेल जगत से सिवनी के लिए गर्व की खबर आई है कि आईपीएल की गुजरात टाइटंस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी अरशद खान का चयन बीसीसीआई द्वारा इंडिया ए टीम में किया गया है, जो आगामी अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलेंगे। प्रशासनिक सजगता और जन सहभागिता का ये ताना बाना सिवनी जिले की प्रगतिशील छवि को रेखांकित करता है। सिवनी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख था फिरोज पंडित का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले
3: बहुत थे जी, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
4: अच्छा,
3: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर काका, किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया। उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा।
4: जी जी जी, आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
3: जी,
4: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
3: बिल्कुल, मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स है यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी हैं, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शन हैं।
4: अच्छा,
3: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
4: जी
3: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद करते हैं किसी न किसी।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, इससे भी पहले?
1: जी जी, क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया तो, और मेरे मायके की तरफ की मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, भुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार
1: है ना, संगीतकारों का और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन, मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी,
1: कि मुझे बेटी हो, और वो आशा
0: जैसी जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल,
1: थोड़ी
0: बिल्कुल।
1: बहुत
0: और आप
1: नजर,
0: उसे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल, एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी
0: नहीं
1: आपको।
0: होता है कलाकार है के साथ, जब हम अपना किसी को आइडल मानते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद मैं तो वो डबल हो गया।
0: हाँ, आप ही का गाया हुआ सुनते
1: जी
0: हैं,
1: जी बिल्कुल,
0: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: जब मैं 6-7 महीने की थी आई ने बताया सब कुछ एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया सावरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया ठीक से याद नहीं मुझे
1: बहुत सुंदर
0: तो आई मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी
1: अच्छा
0: तो मैं बैठे-बैठे ठुमके लगाती थी और इतना हंसती थी वो इतना एंजॉय करती थी उन्होंने वो हमेशा कहती थी भैया इसे ना आप डांस सिखाइए ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी और मंदाकिनी जी मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूं लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे अब घर में जब

0: फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा, दिवाली, सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगा लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते, एक ही थी एंटरटेनर गुड्डी। तो पहले तो ये कि डांस डांस, तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी,
1: जी
0: और सारा म्यूजिक अपने मैं जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग, और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे,
1: जी
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है।
1: जी
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ, थोड़ा बहुत घर में मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं, मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे,
1: जी
0: और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967।
1: जी
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारी एक दो डांसेस है वो करोगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो, डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं कर 1967, हाँ,
1: बिल्कुल
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी।
0: पर तुम गाना गाओ,
1: अरे वाह,
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए। और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया
1: हाँ
0: करते थे,
1: हाँ बिल्कुल
0: ना ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते थे।
1: जी। और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो
1: तो
0: सकता है,
1: देखिए।
0: तो कुदरत ने शायद, हो सकता है
1: बिल्कुल
0: कि दिमाग भी की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहां गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल। तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने, पहला गाना मैंने जब गाया वो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो गए,
1: अरे वाह, अरे वाह।
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा।
1: जी
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं, एक और एक
1: हाँ।
0: और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकने
1: चिकने
0: पात, तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना
1: जी
0: मंदाकिनी
1: जी
0: जी, वो पहले से, ये मेरा मानना
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं
0: है
1: आप,
0: ना, वो
1: बिल्कुल
0: उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती है,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता
1: बिल्कुल सही
0: है
1: कहा
0: ना।
1: जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने, और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस, चार लाइंस तो चार लाइंस, छोड़े ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार, और भी परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से, मैं 7 साल की थी तब,
1: जी
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी जी

0: डांस तो रहने ही दो,
1: बिल्कुल
0: तुम गाना ही गाओ
1: आप
0: बस।
1: लोगों को नचाएंगी ये था खुद नहीं नाचेंगे लेकिन दुनिया को नचाएंगे, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

चिड़िया घर में रानी बोले।

0: आपका पहला गीत जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी
0: जी
1: और

0: वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहां मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक, हरि निवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल वहां, समझिए नेक्स्ट नेक्स्ट रूम उनका। तो वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है, वो आए थे शो देखने। और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त,
1: जी
0: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जय किशन जी नहीं,
1: अच्छा
0: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था। तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
1: अच्छा
0: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे। तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे। सिटिंग मतलब रिहर्सल्स, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे। तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था। तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना,
1: बिल्कुल
0: बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी
1: क्यों
0: को,
1: मोर
0: है ना।
1: लिए जी जी
0: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई। तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर। उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ,
1: हाँ
0: सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म
1: जी
0: बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म
1: अच्छा
0: बतौर स्क्रिप्ट
1: जी जी
0: राइटर्स,
1: बिल्कुल
0: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स थे,
1: हाँ
0: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
1: और सुपर डुपर हिट फिल्म
0: सुपर
1: थी
0: डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे। तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को।
1: जी
0: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमिका
0: बिल्कुल
1: थी वो आपके गायन कौशल को निखारने
0: एकदम।
1: में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने।
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो ले लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी,
1: जी
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सेबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए थे।
1: जी
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो। तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, तो बोली हाँ। मैंने कहा हाँ, अच्छा तो क्या क्या गाती हो। मैंने सारे गम, अच्छा, किस सुर से गाती हो। मैंने कहा काली एक, अच्छा तो जरा सुनो सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गम पा पंचम तक लेके गए, बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम, अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए,
1: जी
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल, अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969,
1: जी
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई, मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डेकर।

0: वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी।
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया।
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है। ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया। बस वहां पहुंचे मंदाकिनी जी, उन्होंने गाना सिखाया
1: जी
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो। मैंने बोला हाँ, गाने में हंसोगी, मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी
0: तो
1: वो।
0: मैंने बोला हाँ, तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी। तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ, और सुमन जी आई,
1: जी
0: सब आए थे,
1: जी
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन, म्यूजिशियंस, सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था। और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन, फर्स्ट टेक ओके,
1: जी जी
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: वाह बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना मंदाकिनी जी एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया,
1: जी
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल।
0: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि।
1: जी
0: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते थे।
1: जी
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए। तो
1: अच्छा।
0: उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी, तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उस वक्त,
1: हाँ
0: तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए,
1: क्या बात,
0: नजराना।
1: वाह वाह।
0: ये एक हमारी
1: जी
0: गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको
0: तो उन,
1: नजराना
0: हाँ,
1: देते
0: एक
1: हैं,
0: नजराना
1: ये
0: देते
1: प्यार का
0: हैं,
1: प्रतीक
0: बिल्कुल,
1: है, स्नेह का प्रतीक
0: और
1: है।
0: उनको एक प्रोत्साहन देने के
1: जी
0: लिए।
1: जी
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है, यानी
0: तो
1: आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी
0: बिल्कुल
1: साहब और सुमन
0: सच में
1: कल्याणपुर के साथ
0: ये
1: और
0: आज महसूस होता है,
1: शंकर जी के साथ हुई, और इतनी बड़ी फिल्म में
0: बिल्कुल
1: आपने गाया।
0: बिल्कुल
1: तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे, और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का, तो
0: बिल्कुल
1: कैसा रहेगा।
0: बिल्कुल। और पता है, मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुलो, टररा है ना बुलबुलो, तेरे पापा पापा बुलबुलो, परारा मम्मी बोलो बोलो, तररा रा रा, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है, प्यार है ना।
1: क्या बात है।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ मतलब, तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी,
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपके समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा। क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।
0: जी
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी,
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामंत जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए।

0: तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही मैं।
1: बिल्कुल
0: तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा हो, एक अनोखा। वो मंदा के नीचे क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते। वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
1: जी
0: है और मेरे मरते दम तक रहेगा।
1: जी बहुत सुंदर
0: मैं हमेशा उनसे कहती थी मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती। और
1: क्या बात
0: इतने
1: है
0: क्यूटली वो हंसते
1: जी
0: थे।
1: जी
0: तो मुझे लगता है मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है और बाल बराबर आशा का, क्योंकि उन वो तो आ ही नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स, कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
1: अरे वाह।
0: ये मैं कह रही हूं वक्त कैसे एक खेल रचता है।
1: रचता है
0: मंदाकिनी जी, यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको
1: जी
0: और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी
1: जी
0: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, जीपीसीपी प्रोडक्शंस,
1: जी
0: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
1: जी
0: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया,
1: जी
0: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था,
1: हाँ
0: आजकल तेरे मेरे प्यार
1: प्यार
0: के
1: के चर्चे
0: चर्चे,
1: हर
0: और
1: जबान पर।
0: यही पूरा था ना, जीपी
1: हाँ
0: सिप्पी प्रोडक्शंस,
1: हाँ
0: शमी कपूर जी, शंकर जय किशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याणपुर जी,
1: जी
0: वही पूरा देखिए खेला।
1: बिल्कुल
0: मुझे नहीं पता था तब
1: हाँ
0: कि कुछ साल बाद मैं इसी इसी सर्कल इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी
1: अभिनेता बनेंगे
0: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी।
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: ये वक्त का खेला है,
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि
0: तो
1: वक्त
0: वही
1: ही है
0: बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल
1: हमारी पहचान बनाता है
0: उसके
1: या
0: आगे
1: हमारी
0: कुछ नहीं,
1: पहचान मिटा देता है।
0: एकदम
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

तो सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त. थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी. और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा

0: आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते थे
1: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गहने गए।
0: अच्छा मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं।
1: जी
0: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता आपको एक फिल्म आई थी औलाद,
1: जी
0: उससे पहले एक फिल्म आई थी शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
1: लाडला,
0: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद। एक गाना था उसका, कांटों की दुनिया है तुझसे।

0: रे, ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है अगर मैं गलत नहीं
1: हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना गाया। देखिए आप देख रही हैं, मैं
1: समय खुद को दोहराता है किस रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत,
0: ये वक्त का खेला ये होता है।
1: और ये आपसे बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त आपको किस तरह से कहाँ कहाँ जोड़ता है
0: ना।
1: बिल्कुल।
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज।
4: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों में मिठास है
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार। आज एक और नए संस्करण के साथ हम उपस्थित हैं और लेकर आए हैं अपने खजाने से कुछ खास रिकॉर्डिंग्स।
1: जी बिल्कुल, और ये पहली रिकॉर्डिंग हमारे सामने जो है मनीषा जी,
0: उसको शाया कर रहे हैं आप या उसके पहले कुछ और सुनाएंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले बात तो उसी के बारे में करनी है। हम इस रिकॉर्डिंग के जरिए पुराने जमाने में, इतिहास में जाने वाले हैं।
0: हाँ, ये तो विविधा जो है ना कार्यक्रम, उसके बारे में अब हमारे श्रोता भी बहुत स्नेह से ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा लगता है जैसे अतीत में खींच के ले जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: और ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं जो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुए, जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया और बाद में बहुत सफल हुए।
1: ऐसे कलाकारों में एक बहुत ही सम्माननीय नाम है दुर्गा खोटे जी का।
0: क्या बात है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवमयी अभिनेत्री, व्यक्तित्व ही उनका इतना गौरवशाली था।
1: बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट्रेस ये थी
0: जी।
1: और दुर्गा खोटे जी के बारे में बता दूं कि उनका मूल नाम था वीता लाड़।
0: अच्छा
1: जी,
0: महाराष्ट्र से थी।
1: जी हाँ, आपका जन्म 15 जनवरी 1905 में हुआ था और मुंबई के गिरगांव इलाके में, जो कांदेवाड़ी नाम की बस्ती है, वहां उनके पिता रहा करते थे।
0: और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन दुर्गा खोटे जी का रहा। ऐसा है जयंत जी कि दुर्गा खोटे जी के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने को, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुनवाएंगे जो एक जमाने की बहुत ही अजीमुशान शाहकार, जिसे कहते हैं ना पृथ्वी वल्लभ, उस फिल्म में दुर्गा खोटे जी ने अभिनय किया था। वैसे तो दुर्गा खोटे जी हमें याद आती हैं सलीम की माँ के रूप में।
1: जी हाँ, जो दवाई का अभिनय उन्होंने फिल्म मुगले आजम में किया था।
0: जी हाँ, लेकिन पृथ्वी वल्लभ इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें वो साज सिंगार कर रही है। तो इस गीत को सुनाते हैं, उसके बाद हम दुर्गा खोटे जी के बारे में कुछ और बातें करेंगे।

0: क्या बात है, पृथ्वी वल्लभ फिल्म की सुंदर से रचना से वो जमाना आंखों के सामने तैर गया। मनीषा जी, वास्तव में दुर्गा खोटे जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 26 वर्ष की उम्र में ही उनके पति गुजर गए। तब से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अभिनय करना शुरू किया। 1931 में पहले फिल्म उन्हें मिली
1: फरेबी जाल
0: जी, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। 1932 में उनकी फिल्म आई माया मच्छिंद्र, और ये वो जमाना था जब पुरुष जो है स्त्री भूमिकाएं करते थे,
1: यानी उस समय बहुत संघर्ष था एक अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना।
0: बिल्कुल, और ये संघर्ष उनके लिए कई मामलों में आगे जारी रहा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आगे जाकर के,
1: क्या बात,
0: फिल्म का निर्देशन भी किया
1: जी।
0: मगर उससे पहले बता दे श्रोताओं को कि 1932 में एक फिल्म आई थी जो

0: हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, अयोध्या राजा यानी अयोध्या का राजा। और इस फिल्म में वो हमें सीता के रूप में दिखाई दी।
1: एक बात हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि प्रभात कंपनी से जुड़ी रही बहुत दिनों तक दुर्गा खोटे जी, लेकिन जैसा कि नाम है ना, उसी में ही शक्ति छुपी हुई है।
0: जी।
1: और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो जो संघर्ष करने वाली स्त्री होती है ना, वो मूलतः कई मामलों में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप भी होती
0: बिल्कुल,
1: है,
0: बिल्कुल।
1: यानी उनके अंदर बहुत नया कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने प्रभात कंपनी को बाद में छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग करने लगी। और तो और उन्होंने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की थी।
0: जी बिल्कुल, ये जो व्यक्तित्व उनका था एक बिजली की तरह था।
1: हाँ।
0: मेरा इशारा है उनकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था सौदा मिली।
1: जी हाँ।
0: आगे उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई और उसका निर्देशन भी किया, उस फिल्म का नाम है साथी, जो बनी 1937 में।
1: उसके बाद आती है चरणों की दासी और भरत मिलाप 1947 में। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि आप इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन से जुड़ी रही।
0: जी, साथ ही आप मुंबई मराठी साहित्य संघ की भी एक क्रियाशील एक्टिव मेंबर थी।
1: देखिए, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी दुर्गा खोटे जी को हम बहुत श्रद्धा से स्मरण कर रहे हैं। 22 सितंबर उनका स्मृति दिवस है।
0: जी,
1: तो एक विशेष रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं, जो हमारे संग्रहालय से हम चुनकर लाए हैं।
0: अवश्य। और इस साक्षात्कार में दुर्गा जी से बातचीत की है मधुप शर्मा जी ने।
2: दुर्गा जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
3: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था।
2: जी, तो ये टॉकी पिक्चर थी?
3: हाँ, वो टॉकी के शुरू शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
3: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विराज खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल। और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस पर, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली।
2: तो इस लंबे अरसे में आपने हर तरह के अभिनय किए होंगे।
3: हाँ।
2: लेकिन फिर भी कुछ खास पसंद है आपकी?
3: मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले। असल में मैंने जो रोल्स किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद थी, वो रोल पसंद था। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सा रोल ज्यादा पसंद था। मैं कहीं परमानेंट आर्टिस्ट तो रही नहीं, और अगर मुझे कोई स्टोरी पसंद नहीं आई तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे इत्तेफाक से हर किस्म के रोल्स मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चरणों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल का, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ी नहीं है आपको ओहो बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आकर किसी शादी नहीं करती।
2: अच्छा, अभिनय से फुर्सत होती है तो आप अपना समय किस तरह बिताना पसंद करती हैं ज्यादातर?
3: जब मुझे कुछ थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती थी उस वक्त मैं अपना वो समय घर में बिताती थी। मुझे घर रखने का बड़ा शौक है और मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं अपना कर्तव्य समझती थी कि उनको उनकी पढ़ाई देखना, उनको अच्छी तरह से तालीम देना, और जो मुझे तालीम मिली थी वो बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैं काफी समय उनके साथ बिताती थी।
2: रसोई वगैरह का भी शौक है?
3: हाँ, मुझे बहुत शौक है महाराष्ट्रीयन पद्धति का। पद्धति मैं नहीं जानती लेकिन लोग कहते भी हैं कि मैं अच्छी रसोई बनाती हूँ मालूम नहीं।
2: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या शौक रहे हैं आपके?
3: मुझे गाने का शौक था ही
2: जी,
3: और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
2: अच्छा, विदेश भी गई?
3: हाँ, मैं 2-3 दफे विलायत गई थी, यूरोप गई थी और जगह भी हुआ, और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफी समय भी इसमें डाला।
2: तो विदेशों में आप फिल्म उद्योग के भी कुछ लोगों से मिली होंगी जरूर?
3: हाँ, मैं काफी लोगों से मिली।
2: और तो आपके विचार में वहाँ का ये फिल्म उद्योग ज्यादा तरक्की पर है भारत की निस्बत?
3: हाँ, ये जरूर है कि वो हमसे आगे बढ़े हैं, हालांकि टेक्निकली मैं समझती हूँ कि उनको काफी मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का। एक्सपेरिमेंट से लोग तो बढ़ ही जाते हैं आगे, हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलता।
2: अच्छा, अभिनय की दृष्टि से?
3: अभिनय की दृष्टि से मेरा ख्याल है हमारे यहाँ

0: के बहुत अच्छे और बहुत इंस्टिंक्टिवली जो लोग हैं आर्टिस्ट वो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ज्यादा आर्टिस्टिक है। एक तो हम ज्यादा सेंटिमेंटल भी लोग हैं, भावना प्रधान हम लोग हैं और वो भावना हम कभी दबा के नहीं रखते, बताते हैं।
1: अच्छा, आपने जीवन की कोई ऐसी घटना आपको याद है कि जिसको आपको याद करके हंसी आ जाती है अभी?
0: मुझे तो अभी भी उस बात की हंसी आती है जब मैंने पहले भवानी साहब के पिक्चर में काम किया था तो मैंने समझा न जाने मैंने कौन सा बड़ा काम किया और बड़े शौक से उम्मीद से मैं वो पिक्चर देखने गई। जब देखा वो इतना भयानक था कि मैं वाकई बहुत डर गई। न मैंने मेकअप किया था न मैंने कुछ इसके बारे में सोचा था, जिस उम्मीद से मैं गई थी जो मैंने देखा उसके जब याद मैं करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वाकई लोग अपने आप को क्या समझते हैं जब देखते हैं तो क्या देखते हैं। काश कि लोग अपने आप को ऐसे देख सके।
1: अच्छा दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की तरफ से और विविध भारती के सुनने वालों की तरफ से भी।
0: नहीं शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ चंद लफ्ज कह सकी। नमस्ते।
2: श्रोताओं, संग्रहालय से प्राप्त इस विशेष रिकॉर्डिंग को हमने आपकी सेवा में प्रसारित किया। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे से बातचीत की थी मधुप शर्मा जी ने। ये हमारी एक खास धरोहर है और अब आगे बढ़ें। हमारी बातचीत में हमने इप्टा की बात की थी जब हम दुर्गा खोटे जी को याद कर रहे थे। इप्टा से ही जुड़े एक और कलाकार हैं जो हमें कई फिल्मों में दिखे हैं और बहुत ही उन्होंने अविस्मरणीय भूमिकाएं की हैं। उनके बारे में बहुत कम बात होती है लेकिन उस कलाकार की प्रतिभा के हम सभी कायल हैं।
3: और इस कलाकार को हम उनके शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उनका नाम असल में है सत्येंद्र कपूर और सब उन्हें पहचानते हैं सत्येन कप्पू के नाम से। और सत्येन कप्पू साहब की शुरुआत असल में मराठी नाटक से हुई थी। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी का लिखा हुआ नाटक था, वही नाटक हिंदी में भी खेला गया।
2: हम अपने श्रोताओं को बता दें, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जी हाँ, पुल देशपांडे, मराठी के महान नाटककार और लेखक।
3: जी हाँ, और इस नाटक को देखने के लिए फिल्म जगत के बहुत से महनीय कलाकार, निर्माता, निर्देशक उपस्थित थे और वहीं उन्हें एक निर्देशक ने चुन लिया अपनी फिल्म के लिए।
2: क्या बात है।
3: उनका नाम था नरेंद्र बेदी साहब और उनकी फिल्म जवानी दीवानी में सत्येन कप्पू को पहला मौका मिला, पहला ब्रेक मिला
2: और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें ऐसे मौके दिए जिसकी वजह से वो आज भी हमारी स्मृतियों में जिंदा हैं। शक्ति सामंत जी की फिल्म कटी पतंग में वो दिखते हैं
3: और रमेश सिप्पी साहब की फिल्म सीता और गीता और आगे संतान में हमने उन्हें देखा, दीवार फिल्म में हमने उन्हें देखा, बहुत सी फिल्में हैं। और सत्येन कप्पू साहब जिनके अभिनय से प्रभावित रहे, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते रहे, उन कलाकारों के बारे में भी बताते हैं कि बलराज साहनी साहब हो या दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जी या प्राण साहब है या कमल हासन, नए जमाने के कलाकारों तक ने उन्हें प्रभावित किया और वो उनके साथ अभिनय का मौका उन्हें मिला।
2: तो सत्येन कप्पू जी को भी हम आज याद कर रहे हैं श्रोताओं और इनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो हम आज खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी आवाज सुनिए और आइए स्मरण करते हैं फिल्मी पर्दे पर चरित्र भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ देने वाले सत्येन कप्पू जी को।
4: मेरा यानी सत्येन कप्पू का बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूं जिन लाइनों से मुझे प्रेरणा मिली है और जिनकी वजह से मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। वो लाइनें लिखी हुई हैं हमारे फिराक गोरुपुरी साहब की। लाइनें हैं, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट है पतंगे न कर, बे आग भी जल जाते हैं जलने वाले। ये लाइनें आपने, मैं समझता हूं कि जरूर बड़े ध्यान से सुनी होंगी और इन लाइनों में जो छुपी हुई बात है उसको भी आपने जरूर समझा होगा क्योंकि ये लाइनें मैं समझता हूं कि मेरे जीवन को बदलने में बहुत ही मेरा साथ दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जबकि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और जब कोई 6-7 साल का था तब मैंने वहां से नाटकों में काम करना शुरू किया और जब बम्बई आया तो यहां मैंने श्री बल्लाज साहनी की फिल्म देखी धोबी का जमीन, जिसे स्वर्गीय बिमलाय जी ने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में जो मैं देखने गया उसमें जो गाना था उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बोल हैं, कुछ तो निशानी छोड़ जा।

बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और थिएटर में मुझे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए जिनमें से मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को नाटक दिखाने ले गया और नाटक में मैं हीरो था जिसमें मेरी पत्नी होती है, एक बच्चा होता है जिसका नाम विनोद होता है और कुछ ऐसे सीन थे उसके अंदर कि जहाँ रोमांटिक सीन, मेरी बीवी रोती है धोती है और मैंने वो किरदार, वो रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि शायद मेरी पत्नी को इस बात का बुरा लगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम गुस्से में कहा कि जाइए पानी विनोद की माँ से ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर बहुत गहरे समंदर में फेंक दिया हो और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, लेकिन कोई मल्ला कोई माझी मुझे निकालने वाला नहीं आया। और मैं अब यकीन मानिए एक महीना तक उस घर के झगड़े में पड़ा रहा जिससे कि मैं समझता हूँ कि काफी मेंटली मुझे परेशानी हुई।

कि हमारी पिक्चर का विलन हमारे डैम को जहां मैं काम कर रहा होता हूं उसका कुछ पुर्जा ऐसा खोलता है कि तेज बहाव में पानी बहता है और जिसमें हमारा गांव भी बह जाता है और मैं भी बह जाता हूं। तो मनमोहन जी को शॉट लेना था कि मैं नदी में मेरी लाश बहती हुई आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नदी का जो बहाव था बहुत ही जोरों पर था। तो मनमोहन जी मुझे बता रहे कि भाई सत्येन कपूर जी आपको वहां से कूदना है और यहां से आपकी लाश गुजरेगी और हम बीच में जहां कैमरा हमें जूम करना हम कर लेंगे। मैंने कहा जी बेहतर है। तो मुझे कहा रेडी? मैंने कहा जी हां रेडी। तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थार से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के एक मकान पे आकर के मेरी लाश रुकी और अपने आप उस जगह पे घूमी, उसने पूरा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में वो नदी के बहाव में आगे निकल गई। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कट, शॉट ओके हो गया। मैं बाहर आया तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई साहब एक मिनट सुनिए, बोले जहां आपकी लाश घूमी थी ना वहां पर एक भंवर है, कुआं है, आप बच गए। आप यकीन मानिए मेरे पांव के नीचे से धरती निकल गई। वो जो जितने भी सेकंड गुजरे मुझ पे वो मैं जानता हूँ कि किस तरह गुजरे होंगे और मुझे अभी एहसास हुआ कि एक नई जिंदगी मिली थी मुझे। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थिएटर से वास्ता रखता हूँ और हम थिएटर के कलाकारों की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है। एक्टिंग के साथ साथ कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं, उलझने भी होती हैं। मुझे एक अपनी जिंदगी का एक हादसा याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। हम जो हिंदी थिएटर करते थे, घर घर जाके टिकट बेचना, तीन तीन महीने एक ड्रामे की रिहर्सल करना, उसके बाद शो करना, तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। एक प्ले था जिसकी मैं रिहर्सल कर रहा था दो या तीन महीने से और रिहर्सल करके एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो भाई साहब ने कहा कि भाई पानीपत से टेलीग्राम आया है, तुम्हारे छोटे बच्चे का स्वर्गवास हो गया है और तुम पानीपत चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बड़ी मेहनत करके हमने ड्रामा तैयार किया है और कल उसका शो होने वाला है, सो मैं शो छोड़ के नहीं जा सकता, कि शो मस्ट गो ऑन, ड्रामा नहीं रुकेगा। खैर मेरे घर पे जो बीती, मेरे परिवार पे जो बीती वो मैं जानता हूँ और हमने शो किया और इसी पर मुझे स्वर्गीय नरगिस भाभी की फिल्म मदर इंडिया का एक गाना याद आ रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

0: गई है।
1: मैं आपसे एक अजीम हस्ती, महान कलाकार का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो आज हमारे बीच में नहीं है। उस महान कलाकार का नाम है संजीव कुमार। ये मेरी किस्मत थी कि सन 58 से मैं उनके साथ काम करता रहा, और जब पहला शो उन्होंने किया तो मुझे याद है कि लोग वाह वाह कर उठे थे कि एक नया लड़का एक करेक्टर को कितनी खूबी से निभा गया, और आखिरी दम तक वो अपने करेक्टर को, यानी जो भी पात्र कर गए हैं वो, उन्होंने बड़ी ईमानदारी, बड़ी संजीदगी से उसे निभाया, चाहे वो मजाहिया करेक्टर हो या गंभीर करेक्टर हो। वो जितने सोबर थे अपनी जिंदगी में उतने मजाहिया भी थे। मुझे एक हादसा याद है, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी की, तो मैंने उनसे 3 रुपए उधार लिए थे। मैंने कहा भाई मुझे 3 रुपए दे दो, तो कहने लगे भाई कब लौटाओगे। मैंने कहा कल लौटा देंगे। हुआ ये कि पैसे साहब वो मैं उनको नहीं लौटा सका। वक्त गुजरता गया, संजीव कुमार साहब बहुत बड़े हीरो बन गए और मैं भी छोटी छोटी फिल्में करने लगा। एक दिन मालूम हुआ कि उनकी और मेरी शूटिंग एक साथ एक ही फिल्म में है, तो मुझे उन्होंने कहा तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम चले चलेंगे साथ में। तो मैं उनके घर पहुंचा, उनकी गाड़ी में जा रहा था, तो मैंने कहा संजीव आपने वो पहली गाड़ी जो ली थी कितने की ली थी। कहने लगा भाई वो पुरानी गाड़ी थी, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी 6,000 में ले ली थी। तो मैंने कहा संजीव काम करो भाई, तुम वो गाड़ी तो मुझे भेज दो। देखो भाई मैं नया नया आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ और इतना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे देता हूँ अभी, और बाकी 3,000 मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। अच्छा भाई जब स्टूडियो पहुंचने को हम आ गए, यानी स्टूडियो नजदीक आ गए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई संजीव वो तुमने वो गाड़ी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, 2,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 3,000 तुम्हें धीरे धीरे चुका दूंगा। तो फौरन बोले कि भाई 3 रुपए तुमने लिए थे आज से 15 साल पहले, अब तक नहीं चुकाए, ये 3,000 रुपए तो शायद तुम मेरे 7 जन्म भी नहीं चुका पाओगे। वो कलाकार, वो महान कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, तो उन्हीं की याद में मैं आपको उन्हीं की पिक्चर खिलौना का गीत सुनाता हूँ।

0: सत्येन कपूर जी की आवाज हमने सुने और एक बार फिर जो हमारी स्मृतियां हैं वो उन्हीं गलियारों में घूम गई जब 80 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रहे और उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा। उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अपनी पसंद के गीत भी सुनवाए थे।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन, निर्देशक

0: तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 एडी को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंद किशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियासामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

0: 74वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म अंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई। आपको बता दें अनंत नाग का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। उनका पूरा नाम है अनंत नागर कट्टे। यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
1: सरकार को कुछ होना क्या
2: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
1: नहीं मालूम कहाँ गया माटी मिला
2: मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है चाहे वो रंगमंच हो सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंत नाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंत नाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कंफर्म आयतु। Here is a man who comes from that powerful place. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೇ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. हिंदी में अनंत नाग अंकुर भूमिका कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंत नाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
4: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उर मुर के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली में
5: जरा होश में आइए हुजूर जरा। हाँ
6: सुनिए मेरी बात सुनिए
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीश्चंद्र की नाटक हरीश्चंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी।

साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गई। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: चला है तेरा कमली, कमली बड़ा प्यारा नाम है, मेरा नाम नंदू है, अच्छा नाम है ना?
2: बारह पुत्रा भाई
1: चल, इधर रोज आती है?
3: हाँ।
1: कल आना, मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
3: अच्छा मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामू बिगड़ेंगे।
1: समझ के जाना कमली। गर्लफ्रेंड
3: क्या
1: तेरी कुमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात ये है, मेले में चोर पाकेटमार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूं तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: मजाक हो गया,
4: जाओ।
3: वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ? इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने।

0: तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
1: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
2: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974। कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
3: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
2: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए। संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

0: उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए और फिल्म इजाजत के लिए साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन के, मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, अमीर

0: खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे, तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा, अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जैसा वो लाइट लगता था लाल लाइट के, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताओ, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है, और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे, तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बस सफाई की जरूरत थी 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहते
1: जी।
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो, पलंग हो, उस इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती हूँ। क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने वाली औरत हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ, कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती और हंसती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही हूँ।

0: राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
2: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी।
3: ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल।
0: कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

0: अब हमारे पास वक्त नहीं है जयंत जी कि आज हम विविधा में कुछ और सुनवाएं, समय की सीमा है, हम अपने श्रोताओं से अब अनुमति ले।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अगले संस्करण तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह की नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और

0: औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म सड़क से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: केके को आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म। सईद कादरी ने इस गीत को लिखा।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

天。जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आपके गीतों की लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है, और अगर ना भी मिले तो भी आप गीत कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है वो गीत आज इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लें। दोस्तों, आपके प्यार भरे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं कमेंट्स के जरिए, और उन्हें भी पढ़ते हैं, साथ ही गीतों का सफर भी शुरू करते हैं। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने आज की इबारत या टेक्स्ट नहीं पढ़ी है, हम एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इबारत यानी कि टेक्स्ट कुछ इस प्रकार था। शाम का वक्त था, आसमान हल्का नीला था और दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अचानक उसकी नजर ठहरी एक लड़की पर जो शाम के उन रंगों को निहार रही थी। उसने कुछ सोचा और आखिरकार पूछा, इतनी देर से आप यहाँ अकेली क्यों हैं? वो मुस्कुरा दी और कहा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो शरारत से बोला, अच्छा, और अगर मैं नहीं आता? जवाब मिला, तो शायद ये दीवाना दिल तुम्हें ढूंढने निकल पड़ता। उसे देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, ये लड़की जाने कैसी है दीवानी। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। सामने दूर तक फैली हंसी वादियां और खिला हुआ आसमान जैसे उन्हें किसी अनजान सफर के लिए बुला रहे थे। उसने अचानक कहा, चलो कहीं दूर निकल चलते हैं। कहां? जहां कोई हमें पहचानता ना हो, जहां बस बातें हों, रास्ते हों और एक खुला आसमान। पहाड़ी रास्तों से होते हुए कुछ दूर जाकर दोनों एक छोटी सी पहाड़ी पर रुक गए। नीचे घाटी में शाम उतर रही थी। वो चुपचाप आसमान को देखने लगी। उसने पूछा, भरोसा है मुझ पर? जवाब आया, दिल का ऐतबार क्या कीजिए। उस पल कोई इजहार नहीं हुआ, लेकिन शायद दोनों समझ गए थे। उसने पूछा, अगर कभी हमारी कहानी लिखी जाए तो कहां से शुरू होगी? जवाब आया, तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म। दूर आसमान में बादल चांद के सामने से गुजर रहे थे। उस रात जब वे वापस लौटे तो दोनों के पास कोई बड़ा वादा नहीं था, बस एक एहसास था कि जिंदगी की भीड़ में कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ एक साधारण सा रास्ता भी खूबसूरत सफर बन जाता है, और शायद यही मोहब्बत है, जहां कहानी किसी तारीख से नहीं किसी नाम से शुरू होती है। तो ये थी आज की इबारत जो कि फेसबुक पोस्ट पर भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और आपके संदेशों का इंतजार मुझे रहेगा।

लव स्टोरी फिल्म से गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी ने से लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। और आपके संदेश भी हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों के सफर के साथ शाम की सुहानी बातें होंगी और कुछ शामें दिल में उतर जाती है। विविध भारती जब शाम को नए पुराने गीत सुनाता है तो वे शामें अद्भुत हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफर हो या रास्ते का, यदि हम सफर अच्छा हो तो रास्ता बड़ी आसानी से कट जाता है। वो दूर से उगता हुआ सूर्य, नीला आसमान, पहाड़, नदी और शाम को ढलता हुआ सूरज और बाद में चांद, ये सब प्रकृति के नज़ारे बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं, शाम ढली तो कोई ख्वाब सा मिला, राहों में जैसे कोई जवाब सा मिला, न वादा हुआ न इजहार की बात, बस साथ चला कोई और सफर खास हो गया। बिल्कुल, हमारा सफर भी एकदम खास हो जाता है जब आपके मैसेजेस, आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, आप अपनी बात हम तक रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर में एक लड़की और एक अनजाने व्यक्ति के अचानक मिलने और साथ में पहाड़ों और नदी के वातावरण में साथ साथ सफर करने की बात कही गई है और एक दूसरे को याद रखने की कहानी लिखी गई है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी में कोई यूं ही मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब उसके साथ बिताया एक छोटा सा पल यादों का खूबसूरत हिस्सा बन गया। ना कोई बड़ा वादा, ना कोई लंबी कहानी, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा एतबार और साथ चलते हुए दिल का मुस्कुरा देना, शायद यही तो सच्चा प्यार होता है।

एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में इंतजार और दीवानापन, दिल दीवाना और उनकी मोहब्बत जैसा कुछ उन्हें लग रहा है, इसी तरह के गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और आज की इबारत का संदेश यह है कि साथी मनचाहा हो तो सफ़र कितना भी कठिन हो आसानी से कट जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, बिल्कुल आसानी से कट जाता है और पता भी नहीं चलता आपके इन संदेशों के बीच और प्यारे प्यारे गीतों के बीच। गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन साथ ही एक सवाल, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन, रविवार, तो आज का दिन आप कैसे बिता रहे हैं? एक तरीका तो ये होता है कि सारे घर के काम आज के लिए निकाल लिए जाएं, पेंडिंग वर्क जिसे कहते हैं, जो कुछ नहीं किया, जो वक्त नहीं मिला पूरे हफ्ते करने का, वो आज के दिन निपटाया जाए। और एक तरीका ये होता है कि आराम से चाय की चुस्कियों के साथ, अच्छे गीतों के साथ आराम से बैठा जाए, सिर्फ आराम आराम और आराम किया जाए। तो आप किस तरफ आते हैं, आज का ये जो दिन है किस तरह से बिता रहे हैं, जरा साझा कीजिए अपने संदेशों के जरिए, अच्छा लगेगा हमें पढ़कर। आपके संदेशों का इंतजार और साथ ही ये गीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से अभी आपने सुना शैलेंद्र ने से लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग, और आपके संदेश हम तक पहुँच चुके हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज संडे छुट्टी का दिन, सुबह सुबह ही होम मिनिस्टर यानी कि मेरी धर्मपत्नी के ने घर के सामान की लिस्ट हमें थमा दी और वो संडे का इंतज़ार कर रही थी। मैंने भी शरारत से पूछा कि अच्छा मैं मना कर दूं, तो धर्मपत्नी मुस्कुराई और मैं मान गया। और अब वो मंडी में सब्जियां भी ले रहे हैं, फ्रूट भी ले रहे हैं और सामान भी लेने का इरादा है, और साथ ही अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए रेडियो पर सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, इससे अच्छा संडे और कैसे मन सकता है, आप बताइए। एक और श्रोता लिखते हैं कि क्रिकेट मैच को छोड़कर सुरीला सफर का आनंद लिया जा रहा है और हर रोज का नाता जो है सुरीला सफर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी कुछ इसी तरह का नाता है आप सब से। एक और श्रोता लिखते हैं कि आराम से लेटे हुए गीतों का मजा ले रहे हैं और बस सुबह से ही सारे प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम घर पर बैठे हैं और बुजुर्गों का समय तो घर के छोटे बच्चों के साथ इतवार के दिन अच्छे से निकल जाता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है, बाकी समय गुजारने के लिए विविध भारती का साथ रहता ही है और हम काफ़ी सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ऐसे ही अपना इतवार भी निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि अब वो रिटायर्ड हैं तो रविवार हो या सोमवार सभी छुट्टी के दिन एक जैसे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्यार आदमी को जिम्मेदारी का हिस्सा बना देता है। जी हाँ बिल्कुल, और आज के दिन आराम से समय सुरीला सफर के गीत सुन रहे हैं और ये जो गीत है दीवाने का नाम ना पूछो, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए, और कुछ दिलचस्प संदेशों का इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि किस तरह से इतवार का दिन निकलता है, आज क्या कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी दिन की क्या प्लानिंग रहती है, क्या कभी सोमवार ऐसा तो नहीं लगता कि स्कूल जाना है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी शनिवार रविवार के बाद जब सोमवार आता है तो शाम होते होते कैसा महसूस होता है रविवार के दिन, बताइए मुझे।

दूसरा आदमी, ये था फिल्म का नाम। और ये गीत आप सुन रहे थे मजरू सुल्तानपुरी में से, लिखा राजेश रोशन का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, काम तो चालू रहता है और साथ में विविध भारती हो तो बोर होने का वक्त ही नहीं रहता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती के साथ जुड़े हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर बनती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सात गीतों की फहरिस्त में ये जो है चौथे नंबर का गीत शामिल हुआ है, क्या मौसम है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं तो सुबह से ही सोच रही थी कि आज संडे है, आराम से काम करूंगी, लेकिन अचानक पतिदेव की जरूरी मीटिंग आ गई और फिर वही जल्दी जल्दी काम में जुट गई। लेकिन नो टेंशन, विविध भारतीय है ना।

बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इन श्रोता का। एक और श्रोता लिखते हैं कि इतवार के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, तो जो हमारी हेल्पर है आज उसके बच्चों की छुट्टियां भी रहती है, बस वो भी आज छुट्टी पर ही है। काम थोड़ा बढ़ गया है लेकिन इत्मीनान से धीरे धीरे निपटाए जा रहे हैं और सुरीला सफर के साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो युवाओं को समर्पित है, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों अकेले में मिलते हैं और प्यार की बातें होती है, फिर वे पहाड़ों में वादियों में घूमते हैं, झरने के पास समय बिताते हैं और फिर लौट पड़ते हैं। अलग अलग दोनों को अपने घर जाने की मजबूरी है और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करते हैं। क्या बात है, आपने तो ये कहानी लिख दी है। इबारत के बारे में एक और श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत की खास बात यह है कि ये किसी मोड़ पर नहीं ठहरती, बल्कि एक मुलाकात से शुरू होकर एहसासों के उस मुकम्मल सफर को बयां करती है। शाम का ढलना, पहाड़ों और वादियों की बातें, दो दिलों के बीच किसी तरह का वादा ना होना लेकिन विश्वास का पनपना बहुत ही खूबसूरत लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। और हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में आगे अगले गीत की तरफ।

0: वारिस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे। वर्मा मलिक ने इसे लिखा, उत्तम जगदीश का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंचे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी लोग घर पर ही होते हैं और सड़कें कुछ खाली खाली दिखाई पड़ती है। बाजारों मार्केट में कुछ भीड़ भाड़ सी दिखाई देती है और ये सब देखकर लगता है कि रविवार अपनी पहचान स्वयं करवा रहा हो। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अभी हैदराबाद में हैं, बिटिया जवाईसा के साथ हैं और यहाँ पर गणेश विसर्जन चल रहा है और बाद में प्रसाद भंडारा होगा और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर विशेष पंक्तियां, ढलती हुई शाम ने एक नया पैगाम दिया, दो अजनबी धड़कनों को एक ही नाम दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भी इत्तेफाक है कि आपने जो आज सुरीला सफर प्रोग्राम में सवाल पूछा है, उसी समय और इत्तेफाक से उसी सवाल पर मैं अपना कमेंट टाइप कर चुका था। और यही तो बात है, विविध भारती मुंबई से हमारी जो पहचान है, जो प्यार है, ये उसका प्रतीक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके संदेश हम तक भेजते रहिए और बताइए कि आज का रविवार, आज का ये जो दिन है, किस तरह से बिता रहे हैं आप, या फिर क्या सोचा था और वैसा नहीं हुआ, क्या प्लानिंग थी वैसी नहीं हुई, ये भी हमें लिख भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोमवार आने को होता है तो कैसा लगता है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आने वाली है, अभी भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जाना है, किस तरह के भाव आते हैं मन में, ये भी लिख सकते हैं। दिलचस्प संदेश रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे हे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की,
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम,
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर विविध भारती से।

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था और हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीत में सफ़र के साथ आपके साथ चलना है ना। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है, ऐसी अनुभूतियों में ही रहते हैं हम और ऐसे ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हवाइन गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है नीले नीले अंबर इस गीत पर। एक और श्रोता लिखती है कि आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ पर प्रोग्राम जरूर सुन रही हूँ और आपके साथ ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज की इबारत पढ़कर ऐसा लगा जैसे शाम के रंगों में कोई पुराना गीत धीरे धीरे उतर आया हो। कहीं इंतजार है, कहीं एतबार है, कहीं साथ चलने की चाह है और कहीं बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता। शायद मोहब्बत भी ऐसी होती है, बड़े वादों से नहीं, किसी का साथ साधारण से रास्ते को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफर को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेशों का इंतजार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ, खेल लेता हूँ और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मज़े से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत में इंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज़ ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा है। जब ये आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रविवार का दिन सुकून, पुरानी यादों और अपनों के साथ फुर्सत के पल बिताने का नाम है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, मेरा तो रविवार की सुबह की चाय की चुस्कियों और विविध भारती की सुरीली धुनों के साथ बेहद खास अंदाज में बीत रहा है। क्या बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं, बिग फैन ऑफ विविध भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन प्यार भरे संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आया कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन

भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतजाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे। और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा। बने रहे विविध भारती के संग।

कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और डोमिनिक और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही हम दिल दे चुके सनम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया जा रहा है। सत्र के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपस्थित रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान सिंहस्थ 2028 को लेकर नीलगंगा रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही IT पार्क पहुंचकर वहां विकसित की जा रही अधोसंरचना एवं सुविधाओं का अवलोकन भी किया।
1: हर वर्ष बीते वर्ष का रिकॉर्ड टूट रहा है। यहाँ 2022-23 तक 60-70 लाख लोग आते थे, गए साल ही 8 करोड़ से ज्यादा लोग उज्जैन आए, इस साल ये 12 करोड़ से बाहर जा रहे हैं। तो हर दूसरा व्यक्ति जो राज्य में आ रहा है वो हमारे उज्जैन की तरफ आ रहा है। तो उज्जैन, इंदौर, ये पूरा धार्मिक पर्यटन का एक नया केंद्र के रूप में उभर रहा है और ये पूरी इकोनॉमी बदल रहा है। आर्थिक रूप से भी हमारे लिए सब प्रकार के मार्ग खोल रहा है और सभी की व्यवस्था जुटाने के लिए सरकार भी पूरा मन खोल करके काम कर रही है।
0: भारत की एला वेनिल विलारिवन ने जापान की आईची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने पहले जीते गए टीम रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक भी अपने नाम किया। वहीं एशियाई खेल 2026 में भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल विलारिवन, विदर्शा के विनोद और सोनम उत्तम मस्कर को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस सराहनीय उपलब्धि के साथ भारत का एशियाई खेलों में पदकों का खाता खुला है, जिससे देश को उन पर गर्व है। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों को भविष्य में भी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट लगातार फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बोत्सवाना से भारत लाई गई चीता CCB-2 को गांधी सागर अभयारण्य के जंगलों में विमुक्त करेंगे। नई मादा चीता के गांधी सागर पहुंचने के साथ अभयारण्य में 2 नर और 2 मादा सहित कुल 4 चीते हो जाएंगे। इससे गांधी सागर में चीता संरक्षण एवं पुनर्स्थापना के प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर तेज हो सकता है। उत्तर अंडमान सागर में बन रहा निम्न दाब क्षेत्र प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है। अगले 4 दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि 23 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन नए सिस्टम की दिशा और ताकत के आधार पर मौसम के पूर्वानुमान में बदलाव हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेवा संकल्प अभियान के तहत पन्ना में CM राइज विद्यालय इंद्रपुरी एवं सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय बाईपास में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं धार जिले में भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं में 26,684 विद्यार्थियों ने भाग लिया। झाबुआ में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मैहर संगीत महाविद्यालय में स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की पुण्यतिथि पर स्मृति संगीत प्रसंग का शनिवार को आयोजन किया गया। सिंगरौली NTPC विंध्याचल परियोजना में गणेश उत्सव बड़े

धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग अलग घटनाओं में दो चरवाहों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: दोनों वायु सेनाओं के बीच
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों वैज्ञानिक जानकारी पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
3: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
4: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: बिहार में इंपोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
6: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोंस्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केवीके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोंस्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
5: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: को हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
8: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
9: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30

0: की आई और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
2: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई है और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: है, डर से सकते नहीं और बन रहे हम दर्द है।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मधुमति फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नग्न में विविध भारती से।

आशा भोसले की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे साहिब बीवी और गुलाम फिल्म से। शकील बदायनी ने इसे लिखा और हेमंत कुमार का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एसडी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: यह विविध भारती लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत
2: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत।

श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में मनचाहे गीत, जिसका नाम है आपके प्यार भरे फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को एकदम तैयार है। आज का ये गीतों का सफर आप तय करेंगे अनुराधा उपाध्याय के संग। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।

जानी दुश्मन इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार भारती पारस पायल श्वेता और उर्वी बैन ने। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव अनिता जाधव प्रसाद जाधव बेबी सोनल ने। ग्राम खकड़ तहसील कोंच जालो उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुजर सत्यम सिंह अंशराज एवं उनका समस्त परिवार। संबलपुर कांकेर से ज्योति ओजस्वी इशिका फागुराम यादव ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत कीसू तासु अर्णव आनंद सत्यम ने इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी और साथ ही आनंद।

मनाली की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420। फिल्म का नाम शैलेंद्र ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छह गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र

झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वागेनी से सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने से सुनना चाहा था और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलन ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में गीत राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखेड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टीडी मल्होत्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक बीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मूलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक

शोकनिवासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चीटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
0: और तोड़ो?
1: नहीं नहीं, और न तोड़ो, क्यों रोकती है?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासव दत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदय से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेटी।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासव दत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
1: हाय आर्यपुत्र, ये कैसी व्यथा।
3: गिरे हुए बंधुजीव कुसुम और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है। अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
4: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासव दत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
3: देवी पद्मावती, देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी? तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे अरे, कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
2: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
0: हाँ हाँ, वही तो है चेटी। अवंती की, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
2: हाँ यही करें राजकुमारी।
3: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
4: कैसे जाना वसंतक?
3: इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
4: वसंतक, इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
3: बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
4: अच्छा चलो।
2: अरे ये वसंतक मूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके

0: मधुचक्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं?
1: हाँ हाँ ऐसे ही करो।
2: अरे बचाओ बचाओ इन मधुकरों से, इन भ्रमरों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
3: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
4: जी
0: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
1: लेकिन प्रसन्नता है, सामने ही आर्यपुत्र बैठे हैं।
5: आर्यपुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
0: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
5: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े, इससे आंखों में आंसू आ गए।
6: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
3: पूछो वसंतक।
6: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
3: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
6: मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब तो सच सच बता दें प्रभु।
3: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
6: मेरे लिए तो दोनों समान है प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय, क्रोध अहंकार रहित, मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं, आर्य वसंतक कहाँ गए, आर्य वसंतक कहाँ है।
3: मित्र वसंतक, मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
6: अब देवी वासवदत्ता कहाँ है, वे तो कभी की परलोक सिधार।
3: हाँ मित्र, तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया। अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक तुम मेरी दशा नहीं जानते, वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता, उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
6: अरे अरे आपका मुख आंसुओं से भीग गया, चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
1: अवंती के आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो यही समय है, हम यहां से निकल चलें।
5: नहीं राजकुमारी, व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं, आप यहीं ठहरे, मैं ही यहां से चली जाती हूँ।
0: हाँ यही उचित है, देवी पद्मावती हम आर्य के पास चले।
1: सचमुच जाओ?
5: हाँ जाओ पद्मावती जाओ, वे दुखी हैं उन्हें सांत्वना दो।
1: आर्य की जय हो।
3: पद्मावती बैठो, जल ले आए वसंतक।
6: जी
3: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
1: अथवा किसी दुख से?
3: नहीं पद्मावती नहीं।
6: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारे और अपने सुहृद जनों को दर्शन दे।
3: ठीक कहा वसंतक, आओ चले।
7: मधुरी के, ओ मधुरी के जल्दी इधर आ।
1: आई
7: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है, तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
1: राजकुमारी कहाँ है?
7: उद्यान वाले समुद्र गृह में।
8: मैं आर्य वसंतक को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ये संदेश दे दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजन शीघ्रता करें, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र ग्रह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र ग्रह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है, सर्प नहीं। ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहाँ सैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहाँ आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहाँ नहीं आई। देखो ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहाँ कोई शोभा रची गई।
1: तो देव उनके यहाँ आने की प्रतीक्षा करें।
2: हाँ यही ठीक है। मित्र वसंतक
1: जी,
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव सैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासव दत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासव दत्ता, वासव दत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
2: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
2: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
3: भाग्य कितना निठुर है, ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो। क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
0: वासुदत्ता,
3: ये तो आर्यपुत्र है, यहाँ कैसे?
0: प्रिये,
3: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगेंद्रायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्त

0: कसम से अधूरा रह जाएगा।
1: अवंती राजपुत्री,
0: लगता है आर्य पुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं। एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
1: शिष्य,
0: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
1: क्या तुम कुपित हो?
0: नहीं, दुखी हूँ।
1: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
0: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
1: वासुदत्ता, प्रिय
0: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहाँ देर से बैठी हूँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
1: प्रिय,
0: चलो, चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो। अब चलो।
1: ठहरो वापस, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो। अरे ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
2: राजन, जाग गए आप?
3: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
2: क्या
3: वासुदत्ता जीवित है?
2: हाँ, वासुदत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गई।
3: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
2: समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासुदत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
3: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वह सदा बना रहे।
2: समझा राजन, समझा। इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
3: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा, मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो, स्वप्न में ही वासुदत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां भी रोमांच है।
2: राजन, व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुर्शाला चले।
4: चलिए राजन, चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणी पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुमणवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणी को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
0: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
0: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए हैं।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
0: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कुल वीणा बजा रहा था,

0: तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ भाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले ले। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता, वासव दत्ता वो कहाँ है?
1: आप सोचे इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे।
2: विजया जा, निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य। स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
3: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
1: जो आज्ञा प्रभु। आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
3: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
1: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
3: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
1: कंचुकी और धाये द्वार पर खड़े हैं महाराज,
3: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
4: आर्य पुत्र की जय हो।
1: आर्य पुत्र की जय हो।
3: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
5: सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं।
3: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
5: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
3: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ। बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासव दत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो है?
1: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
3: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासव दत्ता बस वो ही नहीं है।
1: राजन संताप न करें।
5: स्वामी धैर्य धरे, महासेन कन्या वासव दत्ता मरकर भी अमर हैं, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
3: वासव दत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
1: राजन, राजमहिषी अंगारवती ने कहा है वासव दत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं, पहले से ही मनोनीत जामाता ही, इसी विचार से आप उज्जैनी लाए गए थे। फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष आपको वासव दत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासव दत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासव दत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्रफलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
3: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका ये कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
1: आर्य पुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ। ये देखिए पद्मावती जी। अरे
3: देवी, क्या बात है?
1: आर्य पुत्र, आश्चर्य, देवी वासव दत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
3: यहाँ?
1: हाँ आर्य पुत्र।
3: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
1: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
3: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है, यूं तो रूप साम्य मिल ही जाता है।
1: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से

0: ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
1: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
2: संभव है वही हो।
1: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
0: जो आज्ञा प्रभु।
1: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
2: जी।
3: जय हो, आपकी जय हो।
1: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
3: हाँ राजन।
1: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
2: आर्य पुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
1: धरोहर लौटा दो पद्मावती। वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्य वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
2: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासवदत्ता है।
1: मेरी प्रिया वासवदत्ता, सच? अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासवदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
3: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं करा, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
1: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
3: स्वामी की जय।
1: महामात्य।
2: आर्य पुत्र की जय।
1: वासवदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महामात्य यौगंध रायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासवदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
4: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
1: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम दूतों की रक्षा हुई है।
2: तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है।
0: आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते हैं, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
5: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
1: मित्र यौगंधरायण, बताओ देवी वासवदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
4: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
1: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
4: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासवदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
1: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
4: हाँ राजन, सभी जानते थे।
1: ओ
4: महाराज उदय

तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँ
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
2: जी बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो और यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है। तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
2: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
2: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
2: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
2: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ

0: पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी माताजी हम तीनों शायद हमारे मामा के यहाँ घर गए, मुझे याद नहीं।
1: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया,
0: हाँ,
1: और दौलत को ठुकराया।
0: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो, और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए, क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
1: अच्छा, ये लखनऊ की बात
0: है। ये लखनऊ की बात है, और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब।
1: जी,
0: आपने नाम शायद सुना होगा।
1: जी,
0: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे, और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों का म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था कि जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं वो, और फैमिली में किसी के पास आया नहीं। तो वो चीज़ मुझ में भी आई, और मुझ में डैडी को कैसे पता चले, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था।
1: बाबा,
0: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे।
1: जी,
0: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरे को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी। बच्चे को कहाँ पता चलता। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उस दिन डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया,
1: एक झटके में हवेली से बाहर,
0: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद डेढ़ दो महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं। बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया,
0: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया।
1: जी जी,
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया।
1: जी,
0: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा,
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा। मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे। और कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान,
0: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने एक रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल।
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था।
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे थे।
0: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे, डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे, और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
1: जी।
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
1: वाह, क्या बात है,
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता, मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
1: वो तो मैंने देखा है आपको,
0: लेकिन हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर। टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा है, हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर। तो जी, वहां से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते, गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ? रायपुर, फिर अहमदाबाद,
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वाला भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा। और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बम्बई छोड़ के चले गए,
1: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आया तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एली एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहां चले गए, वहां देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही?
1: 12 वर्ष।
0: अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी कहते हैं बहुत सी यादें हैं, डैडी
0: नाम,
1: डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी ये लोग पास करते थे, तो ज्ञानी जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा,
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
0: अच्छा,
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ।
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे 47
0: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
0: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप?
1: जी, डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
0: जी,
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपना, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
0: जी,
1: 2-3 महीने ही। मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना, तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा।
0: क्या बात है।
1: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका वायलिन में पोलका होता है
0: जी,
1: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया, वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊं,
0: वो कहानी में आगे आएगा,
1: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुए।
0: बाप रे, 10-12 घर
1: 2 साल में
0: जी,
1: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरी बंदर गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटूंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही
0: जी,
1: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
0: बाप रे बाप,
1: ये लोग सुन के बहुत हैरान हो गए,
0: 13.5 घंटे,
1: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
0: ओहो,
1: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से

0: कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
1: अरे बाप रे,
0: 4.5-5
1: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेले
0: नहीं,
1: बच्चों के साथ खेले
0: कभी? वही नहीं, कोई यही जिंदगी थी। डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
1: बस उसके आगे
0: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
1: जी,
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता कि मैंने कह दिया तो तुमने उनको करना ही है।
1: कितनी सुंदर बात है।
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड

0: निकल
1: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
2: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
1: अच्छा वायलिन। हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
2: अच्छा।
1: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
2: जी,
1: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
2: जी, बिल्कुल।
1: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
2: 12 घंटे
1: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था।
2: जी जी,
1: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए।
2: हाँ।
1: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
2: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं, वो भी मोहम्मद शफी के साथ।
1: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है बड़ा रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
2: अच्छा।
1: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
2: जी।
1: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
2: मोहम्मद शफी के घर,
1: मोहम्मद शफी के माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब, जाके हम लोग हॉल में बैठ गए, अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
2: जी,
1: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर आ जा। उनका नाम पीटर था। बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
2: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
1: बहुत बड़ी हस्ती
2: जी।
1: तो उन्होंने, हाँ पीटर आ जा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
2: नोटेशन रख दिया,
1: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, जो भी था याद नहीं। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटिशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से पट से आ, तुम बजाओ। और मैं नहीं बजा सका उससे,
2: अरे बाप रे,
1: I could not play, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं, मुझे हुआ क्या? शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना, यहाँ पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
2: बिल्कुल।
1: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर

0: बड़ा मैं भूल गया
1: जी
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी
0: 10 रुपए पूरे दिन के तो सबको 10-10 रुपए दिए तो 10 रुपए देख के हम सब लोग ऐसे हो गए और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए
1: तो 15 हो गए
0: मुझे 5 रुपए और दिए तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हूं ना ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे शायद फटी होगी
1: जी जी जी जी
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए की कमाई एक दिन में मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई बहुत बड़ी बात
1: इतनी बड़ी रकम
0: कहाँ 15 रुपए तो डैडी को मैं बोला डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है तो मम्मी को 10 रुपए दिए जो पैसे दिए गायूर जी को माथा टेका के आज बच्चे की पहली कमाई आई है
1: 12 बरस की उम्र में
0: नहीं 14 बरस हो गया
1: अच्छा
0: 62
1: जी जी
0: 14 बरस
1: जी
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी पहले दिन की कमाई थी तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे अगले चलो उठो चलो चलते कहा चलो ना निकल पड़े तो पार्ला में रहते थे पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी दादर गए दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी
1: गजब
0: 2 मेरे लिए 1 अपने लिए और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट
1: क्या बात है
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना तो डैडी को लेके गया बोले इसको लड़के को आप बाबा जी के रामप्रसाद जी के डालो
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी के पिताजी
0: प्यारेलाल जी के
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे और इतने बड़े टीचर थे वो इतने बड़े टीचर थे इतने जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना वो हमने महसूस किए और हमने उसको सीखा है हमने उसको जिया है हमने
1: जी कोई उनका नाम नहीं लेता था उनको बाबा जी बोलते थे
0: बाबा जी बोलते मैं तो अदरवाइज पुराने जमाने में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था पिलाता भी था रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी
0: ये बाबा जी थे हमारे
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने
0: महत्वपूर्ण शिष्य था और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए
1: आपके लिए नहीं
0: मेरे लिए
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे
0: लाडला बच्चा भी कहते थे और मुझे राम सिंह कहते थे
1: अच्छा
0: ये कहते ये मेरा राम सिंह है
1: वाह वाह वाह वाह
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटो में कैसे बज सकता है ये उनकी देन है
1: राम सिंह जी की देन है जी
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशन
0: लिख रहे हैं
1: गजब
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म हुआ उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी
1: ये रफ्तार
0: थी जैसे
1: टाइप कर रहे हैं
0: टाइप करते ना जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते थे वो
1: जी
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे ये मेरा राम सिंह है सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
0: जो भी था
1: उस वक्त प्यारेलाल जी
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था
1: अच्छा
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट बहुत बड़े अरेंजर और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणि
1: हाँ 63 में आ गई थी
0: 63 में आ गई थी तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था और प्यारे पे वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी एंथोनी गोंसाल्विस
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूँ
1: अरे वाह वाह
0: मैं भी उनके पास गया था तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पर किसी को दिया नहीं जाता आमतौर पर किसी को भी ये चीज नहीं मिलती उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया 90 म्यूजिशियन
1: अरे बाप रे और आपकी इतनी कम उम्र
0: ये शायद 63-64 की बात है मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
1: जी जी शेख मुख्तार
0: उनकी फिल्म थी वो
1: वाह
0: 6 फुट के थे
1: हट्टे कट्टे
0: उनकी फिल्म थी वो इनका बैकग्राउंड ये चाचा कर रहे थे वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा 7 दिन चाचा ने कंपोज किया और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा हमने उस 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है
1: बाप
0: 15-16 साल की उम्र
1: कमाल
0: वहां से कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा नौशाद साहब का
1: जी
0: तो हम सब बजा रहे थे मैं सब

0: थर्ड रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था, तो मुझे ऐसे बोला तुम बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह,
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा अच्छा अच्छा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशास्त्र की, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
1: कौन सी फिल्म है
0: वो? मुझे याद थी क्योंकि क्या होता था कि नौशास्त्र साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो था फिल्म नहीं हुआ करती थी।
1: जी जी जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग अच्छा। पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता था।
0: ऐसा नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया? हाँ,
0: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह,
0: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया।
1: हाँ,
0: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम,
1: क्या बात है,
0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे।
1: वाह,
0: पीटर साहब और दोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
1: गजब गजब, क्या बात है,
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तो ने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं। ओहो,
0: ये 64 की बात
1: जी,
0: अब फील ही फील है।
1: ये कहां से आया?
0: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
1: हाँ हाँ,
0: पहला सोलो था
1: जी,
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं,
1: जी
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
1: बिल्कुल,
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की एंट्री हो गई।
0: Somebody's there.
1: जी, बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं, तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए, आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा ऐसा काम।
1: जी,
0: हम लोग सब यही होता था यार, ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्मा ही काम है,
0: करिश्मा ही काम। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
1: हाँ,
0: जब प्यार किया तो डरना क्या,
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
0: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे और सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है,
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है। तो नौशाद साहब के कानों में गया तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूं अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूं और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे? तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूं। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे थे वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था। वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गजर, जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए
0: जी,
1: उसके बाद में क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
0: जी
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, वो भी गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है, ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है, शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ।
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है, पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा स्कोर
1: लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए,
0: और गानों के नोटेशंस करने में
1: भी, क्योंकि
0: अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए, तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
1: पार्ट बाय पार्ट?
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे
0: जी, यहाँ तो अभी ट्रैक थे।
1: और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 वायला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगवाए थे।
0: बाप रे बाप रे,
1: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन, 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग भी, उन्होंने अपने पार्ट्स,
0: गजब,
1: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आया।

0: नहीं, फिर सितार आई, फिर तबला आया, ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
1: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के?
0: हाँ, आराम से।
1: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए?
0: पूरे नहीं,
1: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई।
0: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
1: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था, उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस है, बहुत लंबे, बहुत लंबा पीस है, 2.5-3 मिनट का पीस
0: किए हुए
1: जी।
0: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है। वो रखा हुआ पहले का,
1: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा,
0: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना माइन्यूट काम है।
1: जैसे इस तरह से,
0: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
1: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
0: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपया खर्चा हुआ था
1: जी,
0: उस टाइम पे। मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए, पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ का खर्चा हुआ है
1: जी। जी,
0: बकायदा बिल्स है हर चीज के, 1 करोड़ रुपया पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है
1: जी।
0: मतलब तो उस टाइम में भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
0: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने
1: जी, बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
0: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
1: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद।
0: क्योंकि क्या है, उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज किया,
1: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आया गया।
0: ये सुनाइए।

0: देखिए बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी।
0: कि ये संगीत आपने
1: तो यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी
1: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी
1: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है वायलिंस की डबिंग है वो सब लिखना सब उसने किया हुआ है। बात बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई।
0: जी जी जी क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
1: देखिए जी नौशाद साहब क्या थे उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद शफी साहब थे
0: जी।
1: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया
1: जी क्योंकि शफी साहब काम करते थे हम लोग बजाते थे
0: जी।
1: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया
0: जी।
1: चाय पीने चाय पीते हैं चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहे तो नौशाद साहब का घर है
0: आशियाना
1: आशिया। मैं कहा चाचा यहाँ क्या। चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए रूम में बैठ गए। नौशाद साहब ऊपर से आए बोले आओ सभी मियाँ किसको ले आए इसको किसको ले आए ये कौन है। देखा तो हुआ इसको अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे। मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब।
1: क्योंकि मैं अब मेरे से अब काम नहीं होगा मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा। आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर। बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ पर। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
1: है। शाह साहब सामने बैठे हुए चाचा बैठे हुए मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी वो बैठते थे एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी
1: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ। तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह।
1: आज भी वो कुर्सी। और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे।
1: बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं
0: जी
1: गुलाम अली साहब से ले आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के रफी साहब लता जी आशा जी सब उस कुर्सी पर बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे बैठा जी आओ उत्तम आओ उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
0: जी जी।
1: तहजीब और इज्जत
0: जी
1: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है।
1: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
0: जी
1: कभी तुम बोलते नहीं सुना। तो मुझे उत्तम साहब तो मैं उनको जी नाम तो मैं उनको ले नहीं सकता था तो जी जी जी करके बात करता था या अंकल बोल देता था। कल सफी में आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का। मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की
0: जी जी।
1: क्या उम्र होगी मेरी 48 58 68 24 साल की उम्र
0: जी जी
1: कई 24 के
0: जी।
1: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए

0: जी
1: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूं।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ? उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का। तो
0: हाँ
1: मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
0: हाँ
1: वैसे उस टाइम पे 200, 250, 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग।
0: तो ये 3 गुना मांगा
1: 750 रुपये आ गए।
0: जी,
1: बोले ठीक है,
0: 750 रुपये एक गाने
1: एक
0: के लिए।
1: गाने का। बोले ठीक है,
0: गजब।
1: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
0: वाह
1: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
0: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ
1: साथ
0: काम
1: में
0: करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
1: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम, हाँ, कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना
0: जी
1: समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए, हाँ,
0: अच्छा
1: मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है।
0: जी,
1: तो प्रीति बोली डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अब्बू के पास ले
0: अबू
1: चलिए, ले चलिए। मैं ले गया। वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
0: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही
1: प्रीति
0: हुआ।
1: की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो, मतलब वो अब्बू और वो प्रीति, अब्बू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं।
0: गजब।
1: उत्तम कहाँ है? मैं कहा बड़े, बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
0: नाम लेके पुकारे।
1: नाम लेके पुकारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है,
0: जी,
1: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
0: हाँ
1: पता नहीं क्या बात है।
0: अरे
1: हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। उत्तम जी आ गए बेटा।
0: वाह,
1: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया, और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
0: जी।
1: वो
0: नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहां पहले उनका एक गाना सुनते हैं। अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
1: नहीं,
0: इस
1: पहले
0: गाने के बाद
1: नौशाद
0: आगे
1: साहब का एक
0: बढ़ाएंगे।
1: गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है,
0: जी
1: माई फ्रेंड का गाना है, वो
0: हाँ
1: रफी साहब का गाया हुआ गाना है, मैया
0: हाँ
1: मेरी बहती जाए। ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
0: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं, उसके बाद
1: ये
0: आगे की
1: सुनिए,
0: बात
1: उसके बाद
0: करेंगे।
1: फिर हम मदन
0: जी
1: साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी जी,
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया। हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963-64 की बात होगी,
0: जी,
1: जब उनके यहाँ डैडी दो तीन दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे,
1: बिजी रहते थे, और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने, तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए बाहर। उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,
0: जी जी,
1: वो बाहर बैठे हुए। तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं, तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूरी साहब अंदर गए, तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके, हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए, नमस्ते की उनको। हाँ जी, आइए बैठिए। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सोहेल सो है। ये कौन है? बोलते इज माय फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
0: इज
1: माय फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर, वो कहते हैं ना, चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन। यू मीन दैट? यस। हाँ, क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनो। तो मैंने वायलिन खोली, वो वही पोल का बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया, तो
0: फेलिक्स की दास्तान आप पहले बता चुके हैं,
1: फेलिक्स हेरडिया साहब ने वो पोल का सिखाया था।
0: जी,
1: वो पोल का, कुछ 9-10 मिनट का है, और वो पोल का ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है, तो वो सुनते रहे।
0: जी,
1: क्योंकि संगीतकार थे, उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे, मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। जी, आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है, आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है, मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे, तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था।
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम,
1: इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी, तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक,
1: सोनिक साहब। हाँ, इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा।
0: जी जी जी,
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे,
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं।
0: जी
1: जी, रवि साहब क्या, उन्होंने बहुत काम।
0: हाँ
1: हाँ, रवि साहब क्या, बहुत काम किया। तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग, तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब।
0: जी,
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया। तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे, तो कुर्सी में बैठ गए, और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है
1: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आया। तो वो गाना था, हर तरफ अभी यही अफसाने। तो ये गाना था, और मैं बजाते चले गया,
0: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना,
1: की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है, और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
0: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
1: है, उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
0: ये किस धुन पे किया था?
1: पता नहीं, आई डोंट नो।
0: जी,
1: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
0: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था,
1: लेकिन
0: फौजी शख्सियत।
1: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा।
0: जी,
1: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
0: हाँ,
1: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
0: अपनी तरफ से,
1: अपनी तरफ से बज गया।
0: वाह,
1: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते, व्हाट डिड यू प्ले इट? मेरे तो पसीने छूटे।

0: गया, एसी में मुझे पसीना आ गया। सर आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्लेट जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी।
1: हाँ
0: मैंने मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, मैंने सर ये आई प्लेट दिस तोरी री री तिरी री तररी तरर तररी री री द द द ये बजाय मैंने
1: हाँ वो एक पीस आता।
0: ओरिजिनल
1: आप
0: बजाय
1: वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
0: लाया तो हूँ।

0: ज्ञान, ये जो उत्तम बजा रहा है ये फर्स्ट म्यूजिक होगा एंड सोलो वायलिन होगा एंड उत्तम विल प्ले सोलो वायलिन।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से यूरजी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए,
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ अब

पहला भाग रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

एक साथी ऐसा भी था जो ऐसा लगता था मानो जीवन की हर राह अब बस उसी तक जाकर खत्म होती है, लेकिन वक्त का अपना एक अलग हिसाब है, वो कभी एक सा नहीं रहता। लोग मिलते हैं, रास्ते बदलते हैं, दुनिया अपने छुपे हुए रंग दिखाती है, और फिर वही शख्स जो कभी ज्यादा और फिर वही शख्स जो कभी सबसे ज्यादा अपना होता था धीरे धीरे दूर होने लगता है।

सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाए, बल्कि तब होता है जब कोई साथ रहते हुए भी अजनबी हो जाए। जब यादें तो वही रहें, मगर रिश्ते का एहसास बदल जाए।

वो यादें बनकर हमारे जीवन को महकाते रहते हैं, जैसे समय कभी बीता ही ना हो, वो उन्हीं पलों में कहीं ठहर गया हो। क्योंकि दिल के कुछ मौसम वहीं ठहरे रह जाते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि वो सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, वो तो बिछड़ने के बाद भी उतनी ही सच्ची रहती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत का अंत नहीं होता, वो किसी रिश्ते के टूटने से मरती नहीं, बल्कि यादों में एक खूबसूरत कहानी बनकर हमेशा जिंदा रहती है। एक ऐसी कहानी जिसे दिल बार बार पढ़ना चाहता है, भले ही उसका आखिरी पन्ना अधूरा ही क्यों ना हो। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक पहुंचकर नहीं, बल्कि अधूरी यादों में बसकर अमर हो जाते हैं।

मोहब्बत की किताब के कुछ पन्ने हंसी से भरे होते हैं तो वही कुछ आंसुओं से भीगे हुए और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी लिखे ही ना जा सके मगर दिल को उन अधूरे पन्नों से भी शिकायत नहीं होती दिल उन अनकहे अल्फाजों को भी सहेज कर रखता है जो कभी जुबान तक नहीं आ सके उन ख्वाबों को भी संजो कर रखता है जो हकीकत नहीं बन सके कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा मुकम्मल लगती हैं।

होती है ना, वो इंसान भले ही पास ना हो, मगर उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके साथ बिताए पल, उसके होने का एहसास दिल से कभी जाने ही नहीं देती। दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती है, जो ये विश्वास दिलाती है कि शायद किसी दिन फिर से मुलाकात होगी, वही मुस्कान लौटेगी और अधूरी रह गई बातें पूरी

अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ली?
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: रितेश तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
0: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आते सारे नए झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या वंदन। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है, शाम के 7 बजने वाले हैं। तो आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से और सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश गंझू मारा गया है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ हुई। ब्रिजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी का शीर्ष कमांडर था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वलारिवन महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से, और अब वक्त है संदेशों का।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

0: चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है, इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
0: ना भाई ना।
1: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन को लेकर स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ठोस प्रयास करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। गांधी सागर अभयारण्य के जंगलों में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चीता सीसीबी 2 को छोड़ा। और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को सुलभता से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कई नवाचारी कदम उठा रही है। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के सभी आईटी पार्क और इंजीनियरिंग कैंपस में युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। डॉक्टर यादव रविवार को आईटी पार्क और उज्जैन शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा,
2: राज्य में युवाओं को रोजगार को लेकर के कई प्रकार से काम सरकार कर रही है। ऐसे में ये आईटी पार्क, इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में बच्चों को पढ़ने की सुविधा के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। राज्य की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदर्शन भी हो और नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बलबूते पर हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो। समय सीमा के अंदर ये सारे काम चल रहे हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य साझेदार राज्यों के रूप में भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितम्बर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रदेश भर में गरिमा और सम्मान के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों ने अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम से परिवार, समाज तथा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन के लिए संवेदनशील एवं सहयोगात्मक वातावरण तैयार करना हम सभी का दायित्व है। मंत्री कुशवाहा ने आज अपने संदेश में कहा कि वृद्धजनों की अधिकतम और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उनके साथ संवाद कर उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण की दिशा में सार्थक पहल की जाए। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज चीता प्रोजेक्ट के तहत नीमच जिले के गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता सीसीबी 2 को खुले जंगल में छोड़ा। इसके साथ ही अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है।
4: मध्य प्रदेश में ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है और 20 चीते जो शुरू में लाए गए थे वो 12 बचे थे, 8 खत्म हो गए थे। आज हमारे यहाँ राज्य के अंदर लगभग 56 से ज्यादा चीता और उनके बच्चे मौजूद हैं। हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश वास्तव में देश का दिल है और वनांचल के मामले में मध्य प्रदेश अपना बहुत समृद्धशाली इतिहास रखता है, लेकिन जहाँ सैकड़ों साल पहले चीते खत्म हो गए थे वो दोबारा खेलते कूदते किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नीमच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैहर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागी

ताकर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों तथा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और नवाचारों की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराकर आधुनिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नीमच जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सहभागिता कर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अभियान के अंतर्गत आगरमालवा स्थित सांदीपनी शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित हुई चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता एवं विचारों के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। मंदसौर जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अभियान के दूसरे चरण में कल 21 सितंबर को विद्यालय स्तर पर प्रदर्शनी तथा तीसरे चरण में 26 सितंबर को जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी आयोजित होगी। वहीं धार जिले में भी भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता में 26,684 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पन्ना के सीएम राइज विद्यालय इंद्रपुरी एवं सांदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों तथा भाषणों को देखा एवं सुना। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार आसमान में उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1,00,000 से अधिक लोगों ने इस शानदार प्रदर्शन को देखा। रक्षा राज्य मंत्री ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की विदाई से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर तेज हो सकता है। उत्तर अंडमान सागर में बन रहा निम्न दाब क्षेत्र प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर सकता है। अगले 4 दिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि 23 सितंबर तक प्रदेश में भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन नए सिस्टम की दिशा और ताकत के आधार पर मौसम के पूर्वानुमान में बदलाव हो सकता है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत की एना वैनिल विलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक जीता। वहीं भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अगला मुकाबला मंगलवार को श्रीलंका से स्वर्ण पदक के लिए होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उत्साह से भर देने वाली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य व नशा मुक्ति के लिए विद्यार्थियों को ब्रह्म कुमारी संस्था ने नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। अनूपपुर में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जिले में किसान पंजीयन 10 अक्टूबर तक चलेगा। उज्जैन में गणेश उत्सव पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं। इन पंडालों में भगवान गणेश के अलग अलग आकर्षक स्वरूप विराजमान हैं। सीहोर के देलावाड़ी घाट पर खाद्य तेल से भरा एक टैंकर खाई में पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: Akashvani at 90.
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि ₹1,000 से ₹2,499 तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। ₹2,500 से लेकर ₹7,499 तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है, लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

0: और किसान भैया, अब देखो सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा हम शुरू करते हैं और आज को विषय हमने रखो है उद्यान की फसलों में सामूहिक कार्य। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल। डॉक्टर साहब पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है, आप टेलीफोन के माध्यम

0: से हमसे जुड़ेंगे, हमारे विशेषज्ञ से सीधे बातचीत करेंगे और विषय से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न है, वो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब विजय अग्रवाल जी से आप पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जब टेलीफोन लगाएं तो अपने आसपास शोरगुल ना हो, कोशिश करें, क्योंकि इस समय सभी दूर उत्सव का माहौल चल रहा है, उसी दौरान यदि आप फोन लगाएंगे तो थोड़ा व्यवधान होगा, इसलिए एकांत में बैठकर जो है फोन लगाएं और कोशिश करें कि विषय से संबंधित आप फोन करें तो हमारे विशेषज्ञ को आपको उत्तर देने में बहुत आसानी होगी। डॉक्टर साहब, बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं, तब तक हमारे किसान भाई टेलीफोन भी हमें लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस समय उद्यानिकी फसलों में क्या काम चल रहे हैं।
1: देखिए किसान भाइयों, इस समय उद्यानिकी के लिए सबसे अच्छा समय होता है, ये रवि की शुरुआत का समय है और इसी समय विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो वर्ष भर में इसी समय लगती हैं उनका समय आ गया। इस समय सब्जियों की खेती कर सकते हैं किसान भाई, जिसमें विशेषकर अगर बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियां इस समय लगाई जाती हैं, जड़ वाली जो फसलें होती हैं जिसमें से आप देखेंगे कि गाजर, मूली, इसका भी लगाने का समय है। इसके अलावा गोभी पर ये सब्जियां लगाते हैं, टमाटर, मिर्ची, बैंगन का भी लगाने का समय है। इसके अलावा आप देखेंगे मटर और धनिया जो विशेष रूप से इसी महीने में लगाया जाता है, उसका भी समय आ गया और बहुत सारे हमारे
0: डॉक्टर साहब जी हमारी बातचीत जारी रहेगी। जी जी, किसान भाई का हम टेलीफोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में।
2: जी नमस्कार सर, मैं कोमल प्रसाद।
0: हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, आप शुभ नाम बताएं।
2: ग्राम पंचायत साखी, जनपद पंचायत बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर।
0: बुढ़ार शहडोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल करें अपना।
2: जी सर, उद्यान की फसल में जैसे भाटा का खेती करना है सर, तो उसके लिए
0: भाटा का कोई दूसरा नाम है क्या इसका कोई?
1: ये बैगन की बात कर रहे हैं, बैगन लगाने की बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस समय आप बिल्कुल आप बैगन की खेती कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके स्थानीय बाजार में जिस प्रकार का बैगन, क्योंकि बैगन में कई सारी प्रजातियां आती हैं, जैसे आपने देखे होंगे छोटे वाले आते हैं, भरते वाले बैगन आते हैं, लंबे बैगन आते हैं, हरे भी आते हैं, बैगनी कलर के भी आते हैं। तो पहले आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिए कि कौन सी किस्म ज्यादा प्रचलित है, उसको उसका बीज ले लीजिए। और दो प्रकार के बीज आते हैं, एक तो उन्नतशील जातियां आती हैं और एक संकर आती है। तो संकर जाति भी ले सकते हैं, उन्नतशील जाति भी ले सकते हैं, लेकिन इसको आपको पहले इसकी रोपा तैयार करने की आवश्यकता होगी। तो आप इसकी रोपा तैयार कर ले, उठी हुई क्यारियां बनाकर, और एक एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो 100 से 150 ग्राम बीज की इसमें आवश्यकता होती है, और कतार में इसको बो दें। और आजकल तो बीज को बोने के लिए प्रो ट्रे भी आती है, प्लास्टिक की ट्रे आती है, उसमें एक एक बीज करके भी बो सकते हैं। तो आप इस समय तैयारी कर लें, और जब आपका एक महीने का जब पौधा हो जाएगा और खेत तैयार हो जाएगा, उसके बाद एक निश्चित दूरी पे, लगभग आप 2 फीट कतार से कतार की दूरी और 1.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी पे इसको लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस समय लगा दें और खेत को अच्छे से तैयार कर लें, अच्छी किस्म लें और सही ढंग से पौध तैयार करें। यदि आपके आसपास कहीं पर नर्सरी है तो वहाँ से भी आप सीधे पौध लेके आप लगा सकते हैं।
0: जी, और एक और किसान भाई लाइन पर है, चलिए उनका सवाल हम लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्ते सर, प्रणाम करता हूँ आपको, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में, आप सवाल करें।
3: माननीय डॉक्टर महोदय से मेरा प्रश्न रहेगा सर, इस समय जैसे कि हमारी जो फसलें हम लोग लेने वाले हैं, खास करके सब्जी वर्ग की फसलें में बात की जाती है, मटर की उन्नत तकनीकों के बारे में कुछ अच्छी जानकारी दे ताकि हमारे किसान भाई अच्छी फसल ले सके सर।
1: देखिए, मटर लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। सबसे पहले तो अच्छी किस्म जो आपके क्षेत्र में चलती है, क्योंकि मटर आजकल सीधी भी लगाई जाती है, यानी मतलब आप हरी फलियों के रूप में भी लगाई जाती है, और आजकल फ्रोजन करके बाजार में वर्ष बेचने के हिसाब से भी फ्रोजन भी होती, तो मटर का उद्योग काफी अच्छा हो गया। आप इसमें अच्छी किस्म का चुनाव कर लें जो आपके क्षेत्र में चलती है, जैसे अरकेले बहुत ही प्रचलित किस्में हैं, आजाद, P1, पूसा, प्रगति, ये कुछ किस्में हैं। अब इसमें ध्यान रखना है कि एक एकड़ में, अगर एक हेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80 से 100 किलो बीज लगता है। बीज लेने के बाद आप इसको उपचारित आवश्यक रूप से कर लें, इसमें फफूंदनाशक से उपचारित कर लें, और साथ में मटर के लिए राइजोबियम

0: कल्चर भी आता है तो उससे उपचारित करके ही आप इसको फसल को लगाएं। तो इस समय आप अच्छा बीज ले ले और बिल्कुल उपयुक्त समय है, आप लगाने की तैयारी इस समय कर सकते हैं।
1: जी, तो संतोष राव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और हम ले रहे हैं अगले किसान श्रोता का टेलीफोन। इससे पहले हम ये जरूर आपको बताएंगे कि आप किसान भाई जब टेलीफोन लगाएं तो शोरगुल से बचें, थोड़ा सा शांत जगह पर, एकांत जगह पर बैठकर हमें टेलीफोन करें ताकि आपकी आवाज़ भी हम तक बेहतर तरीके से पहुँचेगी। हमारे जो विशेषज्ञ आपको जो बातें बताएंगे वो भी आप अच्छे से भली भांति सुन पाएंगे। और विशेष रूप से हम उन किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि यदि एक किसान भाई आपके सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप चाहें तो उस बात को जो है सुनकर जो है समझे जरूर, ताकि जो है आप अपनी खेती किसानी में उन बातों का फायदा उठा सके। क्योंकि एक किसान की समस्या एक की नहीं होती है, कई हजारों हजार किसान की वही समस्याएं होती है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा सुने। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी शुरुआत में, आपने बताया था कि इस समय जो है ये इतनी सारी फसलें हमने लगा रखी है, सामूहिक तौर पर जरूरी काम क्या है?
0: सामूहिक तौर पे अभी सबसे ज़रूरी काम है अभी, क्योंकि सबसे पहले तो जो फसलें अपन लगाने जा रहे हैं उनका बीज आप बीज से पौधे तैयार कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो सब्जी फसलें हैं उनके अभी पौधे तैयार करने की ज़रूरत है। तो बीज उपचार करके प्रोटरी में या उठी हुई क्यारियों में पौधे तैयार कर लें, खेत बिल्कुल तैयार कर लें, क्योंकि चूंकि आने वाले समय में आप बरसात जाने वाली है तो सिंचाई प्रबंधन की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। तो ऐसे में किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो ड्रिप इरीगेशन तकनीक या टपक सिंचाई पद्धति का अगर खेती में प्रयोग करते हैं, विशेषकर सब्जी में, तो बहुत ही उपयुक्त रहेगा। जहां पर खरपतवार की ज्यादा समस्या रहती है वहां पर मल्चिंग का भी प्रबंधन आप कर लें। मल्च के लिए आप पुराना जो धान का पुआल है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप उस प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, और एक किसान श्रोता का हम टेलीफोन लेते हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आप शुभ नाम बताएं, स्थान भी हमें बता दें।
2: मेरा नाम चंदन कुमार गोंड है और मैं मध्य प्रदेश अनूपपुर से बोल रहा हूँ।
1: चंदन कुमार जी, सवाल क्या है आपका?
2: सर, जैसा कि मैं सरसों की फसल लगाना चाह रहा हूँ।
1: हाँ,
2: तो खेत में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए?
1: सरसों की फसल इस समय अभी है सरसों बोने का?
0: जी, ये बागवानी या उद्यानिकी से हटके है, लेकिन आपको सरसों की फसल लगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय हो गया है। आप सरसों का उन्नत किस्म का बीज ले ले, चूंकि बीज बहुत ज्यादा छोटा होता है इसलिए आपको खेत बिल्कुल अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। आप अच्छी जुताई कर लें, खेत को बराबर कर लें, समतल कर लें, फिर उसके बाद इसकी बुआई करें। बीज उपचार करके आप इसकी बुआई करें और आपके क्षेत्र विशेष के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं इस समय उनका ही आप इसमें प्रयोग करें। और आजकल बहुत सारी संकर जातियां भी इसमें आने लगी हैं, उनका भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी, तो चंदन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनूपपुर से हमें टेलीफोन लगाया और लगातार हमें टेलीफोन कॉल्स मिल रहे हैं, फिर भी एक बार हम टेलीफोन नंबर जरूर दोहराएंगे। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755, टेलीफोन नंबर है 2660902। और अगले किसान श्रोता का हम लेते हैं टेलीफोन। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी सर जी, राम राम।
1: जी आप शुभ नाम बताएं अपना।
3: जय हीरावन बाबा रेडियो सोता संग तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ सर।
1: जी कुशवाहा जी, आप सवाल करें।
3: सर हमारा सवाल ये है कि जैसे सर अभी आने वाले समय में सरसों की बुआई करेंगे सर।
1: हाँ,
3: तो सर कोई ऐसी उपज
1: बिल्कुल बता रहे हैं डॉक्टर साहब।
0: देखिए, ये सरसों की बहुत सारी किस्में प्रचलित हैं, इसलिए उपयुक्त होगा कि आप जो सरसों से संबंधित आपके इधर जो कृषि विज्ञान केंद्र है अशोकनगर में, वहाँ के वैज्ञानिक जो हैं, एग्रोनॉमी के वैज्ञानिक हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों से आप संपर्क करके वहाँ पर जो प्रचलित किस्में हैं उन किस्मों को आप लगा सकते हैं।
1: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद कुशवाहा जी। अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: जी श्रीमान जी, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बता दें हमें, स्थान भी बता दें।
4: कोई मेरा नमस्कार पाजी।
1: जी आप अपना शुभ नाम बताएंगे।
4: जी हाँ, ग्राम बापुर छतीपुर, ग्राम पंचायत छतीपुर, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से सरनाम सिंह रजक।
1: सरनाम सिंह जी, सवाल क्या है आपका?
4: सर जी मतलब

0: फली की फसल है अपनी,
1: हाँ हाँ,
0: तो सर जी उसमें मतलब जैसे मान लीजिए बेगई है हुआ तो अच्छी फली है, जो भली है उनके लिए क्या करेगा वो उसी तरह से वो फर जाए मतलब अच्छी मूंगफली लग जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं डॉक्टर साहब।
2: देखिए ये थोड़ा सा उद्यानिकी से अलग सवाल है, लेकिन आपको इसके लिए जब आपकी अभी खेत में मूंगफली लगी हुई है इसमें आपको अभी तो पूरा खरपतवार मुक्त खेत रखना है, यानी मतलब जल निकास अच्छा होना चाहिए, खरपतवार मुक्त खेत होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि चूंकि इसमें अभी अगर उर्वरक की आवश्यकता, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि उसमें उर्वरकों की अगर आवश्यकता है तो घुलनशील उर्वरक विशेषकर जो पोटेशियम वाले उर्वरक होते हैं उनका 0050 जैसी का छिड़काव कर सकते हैं। और इस समय कभी कभी खेत में देखने में आता है कि कभी पत्तियों पे धब्बे जैसे दिखाई देने लगते हैं, अगर इस प्रकार की कोई समस्या अगर दिखाई दे रही है, रोग एवं कीटों से अगर फसलों को आप इस समय सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका उत्पादन होने वाला है वो अच्छा होगा। खरपतवार मुक्त खेत रखें और साथ में कीड़े एवं बीमारियों से अपनी फसल की को सुरक्षा दें, इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा।
1: तो सरनाम सिंह रजक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और इसी तरह लगातार टेलीफोन हमें मिल रहे हैं। अगले किसान श्रोता का हम फोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना।
3: जी जी नमस्कार सर जी, आप दोनों महोदय को और हमारे सभी सुनने वाले श्रोता बहनों भाइयों को भी नमस्कार।
1: जी आपका नमस्कार हमने स्वीकार किया। सर आप अपना नाम बताएं, स्थान का नाम बताएं।
3: जी जी मैं पंडित राम जी गर्ग अपने प्यारे से गांव खैर मझियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से सर जी बोल रहा हूँ।
1: बहुत बढ़िया पंडित जी, सवाल करें।
3: जी सर जी, हम लौकी और कोहरा लगाए हुए हैं तो ये बढ़ता नहीं है, महीने डेढ़ महीने का हो गया, अभी मुश्किल से ये 5-6 फुट का हुआ है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
3: जी जी, तो थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं इसमें क्या डाल दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या ना दिया जाए कि ये बाढ़ में आ जाए।
2: देखिए देखिए क्या हो रहा है कि कभी कभी जैसे अपन ने लौकी और ये अपने बेल वाली जो फसलें लगाई हैं उसमें क्या होता है कि जड़ों का यानी पौधों का विकास कभी कभी उसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण नहीं हो पाता है, और कभी ज्यादा पानी होने के कारण अभी जल भराव की स्थिति में भी इस तरह की चीज नहीं हो पाती है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि जहां पर पौधा लगाया वहां पर आप अच्छे से निंदाई गुड़ाई कर लें, और उसके बाद उसमें देखें कि किसी प्रकार का कीड़े का या बीमारी का प्रकोप तो उस समय नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है भभूतिया रोग जैसी पत्तियों पर समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण से होता है। तो अपने खेत में खरपतवार निकालते रहे, पत्तियों पर अगर किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही तो वो करें, और इसके अलावा उर्वरक का छिड़काव करें जिसमें 19-19-19 जो घुलनशील उर्वरक है 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, तो इससे आपकी जो बेल है उसकी बढ़त अच्छी होगी।
1: बिल्कुल, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, रीवा से आपने टेलीफोन लगाया। अगले किसान श्रोता का हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: जी स्वामी जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार,
1: आप शुभ नाम और स्थान का नाम जरूर बताएं।
4: जी मैं मध्य प्रदेश सागर ग्राम गौर झामार से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
1: कटारे जी स्वागत है आपका, आप नियमित श्रोता है हमारे, वैसे तो सभी नियमित श्रोता है लेकिन ज्यादातर आप जैसे जो श्रोता हमें फोन लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सवाल करें।
4: शुक्रिया सर। सवाल सर मेरा ये था कि गोभी लगी हुई है सर, लगभग 2 महीने की फसल हो चुकी है। समस्या सर ये आ रही है कि उसमें कुछ कीट हैं जो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सर, तो इसमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए सर?
2: हाँ इस समय, हाँ ये आपने अच्छा बोला, जैसे जैसे बारिश जाएगी इस समय कीटों का आक्रमण, जो रस चूसा कीट होते हैं वो उसका आक्रमण होने की संभावना रहती है, है ना। तो इस सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आप खेत में थोड़ा सा खरपतवार जहां पर गोभी लगी है उसको साफ सुथरा कर लें। इसके बाद आप है ना नीम का तेल जो आता है उसका छिड़काव करें, लगभग आपको 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। तो इससे क्या होता है कि जो रस चूसक कीट होते हैं वो खेतों से दूर रहते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक आध हफ्ते बाद अगर फिर से आपको उसमें कीट नजर आते हैं तो इमिडाक्लोप्रेट या थायोमेथॉक्सॉन दोनों में से कोई भी एक रस चूसक कीटों के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसका आप इमिडाक्लोप्रेट ले रहे हैं तो 0.3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दें, और थायोमेथॉक्सॉन ले रहे हैं तो 15 लीटर के पंप में 5 ग्राम दवा मिलाकर आप छिड़काव कर दें, तो इससे निश्चित रूप से आपका जो कीट का प्रकोप हो रहा है वो नहीं होगा और फसल जो है वो अच्छी होगी।
1: तो विपिन कटारे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और कोशिश हमारी यही रहती है कि हर किसान श्रोता का टेलीफोन लिया जाए, उनकी समस्याएं सुने और हमारे विशेषज्ञ बखूबी उनकी समस्याओं को समझकर उचित जो है सलाह है वो दे रहे हैं और देते रहते हैं। एक किसान भाई है लाइन पर, चलिए उनका फोन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
5: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला सर जी, मनोज नामदेव।
1: नामदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल करें।
5: सर जी मेरा ये सवाल है कि मेरे दो खेत खाली हो चुके हैं, उसमें उर्द मूंग थे वो पटाके निकल के क्लियर हो चुके हैं, तो उसमें मैं गोभी लगाना चाहता हूँ, तो गोभी की बढ़िया उन्नत किस्म बता दे, या फिर गोभी के अलावा और दूसरी कोई सब्जी लगा लूँ तो उसके बारे में थोड़ा मेरे को मार्गदर्शन बता दे सर।
1: बिल्कुल
2: देखिए बहुत अच्छी, आपने शिवपुरी में है, आपका शिवपुरी भी बड़ा बाजार ही है और इसके अलावा ग्वालियर जैसा क्षेत्र, बिल्कुल आप तो ट्रेन रूट पे दिल्ली तक कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जैसे शिवपुरी में आप टमाटर की बहुत अच्छा क्षेत्रफल है तो टमाटर लगा सकते हैं, इसके अलावा आप गोभी भी लगा सकते हैं, फूल गोभी और पत्ता गोभी लगाने का भी समय आ गया है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपको पत्तेदार सब्जियां लोकल मार्केट के हिसाब से अगर आपको अच्छा रेट मिलता है तो इसमें पालक और मेथी का भी समय आ गया है। जैसा कि आपने बोला कि गोभी में अगर कौन सी किस्में अपन लगा सकते हैं, तो बहुत सारी किस्में इस समय उपलब्ध हैं, यानी चाहे उन्नतशील जातियां लगा लें या संकर जातियां ले लें। तो इसमें जैसे पत्ता गोभी की बात करते हैं तो गोल्डन एकर हुआ, पूसा मुक्ता हुआ, कई सारी किस्में हैं। इसी तरह से फूल गोभी में भी पूसा स्नोबॉल आती हैं। इसके अलावा अभी कुछ निजी कंपनियों की भी अच्छी किस्में उपलब्ध हैं तो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन पौधा जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, बीज आप सही ढंग से खुद तैयार करें, रोटरी के माध्यम से बीज तैयार करें, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें, मल्चिंग का प्रयोग करें, तो आप ये कोई भी फसलें लगाएंगे तो उससे अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा।
1: जी तो मनोज नामदेव जी धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और अगले किसान श्रोता का हम फोन ले रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
6: मैं सागर से ग्राम रतौना से बोल रहा हूँ, अंबिका प्रसाद उपाध्याय।
1: उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें।
6: आज का विषय कौन सा है सर?
1: उद्यानिकी से संबंधित जो भी आपको समस्याएं हैं, फल सब्जी।
6: जैसे हमारे पपीता लगे हैं 5-6 पेड़।
1: हाँ हाँ,
6: तो उनमें कुछ पेड़ों में तो सेंगरे टाई की निकल रही हैं, फूल भी रहे हैं
1: जी,
6: तो क्या वो फल देंगे क्या?
2: देखिए वो जो आपने बताया वो फूल हैं जो लंबे से लटकते हुए आते हैं, वो नर पुष्प होते हैं, वो फल नहीं देंगे। लेकिन जो कुछ पपीते में बिल्कुल आप देखेंगे तने से चिपके हुए फूल आते हैं और गठान टाइप की बनती है जिसमें वो मादा पुष्प होते हैं, वो फल देंगे। अगर इस तरह के पौधे लगे हुए आपके पास दोनों तरह के कि जिसमें नर भी आ रहे हैं किसी में और किसी में मादा आ रहे हैं, तो आप ये नर पौधे हैं उनको भी आप रख सकते हैं, जिससे परागण अच्छा होगा और जो मादा पुष्प आ रहे हैं जिन पौधों में उनमें बढ़वार अच्छी होगी। और अगर जैसे आप पपीते का आप भविष्य में और अधिक अच्छी पैमाने पे लगाना चाहते हैं, इसकी व्यवसायिक उत्पादन करना चाहते हैं, तो आपसे और बाकी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आजकल बहुत सारी ऐसी किस्में आ गई हैं जिसमें एक ही पौधे में यानी आपको निश्चिंतता रहेगी कि एक ही पौधे में आपको नर और मादा दोनों आएंगे, उसमें मादा पुष्प आएंगे जिससे फलन अच्छा होगा। यानी इसमें जो आप बोल रहे हैं उसमें नर फूल आ रहे हैं वो फलन नहीं देगा, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपके इधर कैसे फल फूल आ रहे हैं। तो उस हिसाब से और भी किसान भाइयों से निवेदन है कि जब भी पपीते की खेती करें वो ये ध्यान में रखें कि ऐसी किस्मों का चयन करें जिसमें मादा पुष्प और मादा फल आते हैं, जो गाइनोडाइशियस वैरायटी होती है उनके ही आप खेती करें।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने टेलीफोन लगाया और अगला टेलीफोन हम लेते हैं, अगले किसान भाई की समस्या हम सुनते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
7: सर जी मैं ग्राम तरसमा जिला मुरैना से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: तोमर साहब स्वागत है आपका, आप सवाल करें।
7: सवाल सर जी मेरा ये है कि गाजर और पालक बोने का उचित समय क्या है, क्योंकि अभी तक बारिश होती रही इसलिए बो नहीं पाए, कल से बारिश थमी हमारे यहाँ।
1: जी बिल्कुल बता रहे हैं।
2: देखिए गाजर और पालक बोने का, पालक क्या होता है कि बहुत कम दिन की फसल होती है और जहां पर इस पे पानी पड़ता है तो ये इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं और बाजार में बिक्री लायक नहीं होती। तो पालक के लिए आप थोड़ा सा आप ही रुक जाएं,

0: क्योंकि अभी भी एक आध हफ्ता 10 दिन बारिश को रुक जाने दीजिए, फिर इसके बाद ही पालक और इसके बाद गाजर मूली इन फसलों को लगाना उपयुक्त होगा, क्योंकि ये अभी लगेंगी तो इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि फरवरी तक इन फसलों की खेती होती है, तो थोड़ा सा अगर बारिश हो रही है तो आप रुक जाएं, उसके बाद इनको आप लगाएं तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा।
1: तोमर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया, और चूंकि लगातार हमारे किसान भाई जो है अपनी समस्या बता रहे हैं, और शायद ये मौसम जो है ये भी बड़ा उपयुक्त है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है हमारी जो खरीफ की फसलें हैं वो तैयार हो रही हैं, और हो सकता है कई किसान भाई अगले सीजन की फसलें भी लगाने की तैयारी में हो। तो थोड़ा सा अग्रवाल साहब, हम आपसे ये चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो है खेतों में जैसे सब्जियों हमारे किसान भाई लगाने की तैयारी करें, कुछ अभी जैसे एक किसान भाई ने कहा था कि उनके उर्द कट गए हैं, मूंग कट गई है,
0: जी जी,
1: तो वो कौन सी फसल लगाएं, तो खेत की तैयारी के हिसाब से क्या करना चाहिए?
0: देखिए अभी जैसे ही अभी जैसे जहां पर बारिश खत्म हो गई है तो वहां पर तो जैसे ही खेत में बदर आता है तो उस समय खेत की तैयारी करने की आवश्यकता होती है, यानी बिल्कुल ये फसलों के हिसाब से तैयारी इसमें रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये भी नहीं है कि हम लोग जब पूरी तरह से बारिश रुक जाएगी और उस समय खेत तैयार करके उस समय बीज डालेंगे, उपयुक्त होगा कि कहीं ऐसी सुरक्षित जगह पे अभी अगर सब्जी फसल आप लगाने जा रहे हैं और जो बीज यानी जो सीधे बीज से नहीं लगती हैं उनके लिए आप अभी से ही रोपा तैयार कर लें, और जैसे ही बारिश खत्म होती है खेत तैयार करेंगे, जब तक 20 से 25 दिन में वो पौधा तैयार हो जाएगा और खेत में लगाने की व्यवस्था हो जाएगी, खेत तैयार करना है। इसके बाद आपको आगे की सिंचाई को ध्यान में रखते हुए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो आपने लगा रखे हैं उनको आप चेक कर लीजिए, उनको लगाने की आवश्यकता रहेगी। फिर इसके बाद जो कृषि आदान है जिसमें जैसे आपको मल्च फिल्म लेनी है उसकी व्यवस्था कर लीजिए, घुलनशील उर्वरकों की आवश्यकता होती है सब्जी की खेती में उनकी आप व्यवस्था कर लीजिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी 2 महीने पहले ही नए बगीचे भी लगाए हैं, है ना, उस इस समय जो बगीचे लगाए हैं खेत में लगा दिए, जिनको 1-1.5 महीना हो गया जिन्होंने पहले लगा दिए थे, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वो जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं या कलमी पौधे होते हैं उसमें से नीचे से बहुत सारी शाखाएं इस समय निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उनको निकालना भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो पौधा कलमी से देशी होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं।
1: अच्छा।
0: वहां पर आपको जल निकास की व्यवस्था भी करनी है, संभव हो तो वहां पर मल्चिंग भी कर दीजिए, और समय समय पे खेत में निरीक्षण करते रहिए कि कहीं पर कीड़े एवं बीमारी तो नहीं लग रहे हैं। कीड़े एवं बीमारी जैसे सब्जी फसलों में विशेषकर कीड़े एवं बीमारियों की पहचान के लिए प्रपंच जो होते हैं, जैसे रस चूसक कीट के लिए नीले और पीले प्रपंच आप खेतों में लगा दीजिए 1 एकड़ में 8 से 10, जो आपकी बेल वाली फसलें पहले से लगी हैं उसमें जो बॉटल ट्रैप होता उसको आप लगा दीजिए, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, खेत में खरपतवार नहीं होने देना, अधिक मात्रा में नत्रजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, जो भी लगाए मृदा की जांच करवा लें कि आपकी जमीन में क्या पोषक तत्व है, इससे आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से की तैयारी करनी है किसान भाइयों। और अगला टेलीफोन हम ले रहे हैं, जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश।
1: जी पटेल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें।
2: सर हमारी जो भटोई लगी थी उसमें भटे में इल्ली लग गई है और वो पूरी खराब हो गई, उसको क्या करें, कलम कर दें, क्या करेंगे, दवाई डालें?
0: देखिए आप पहले तो जो है इल्ली लग गई उससे ऊपर पूरा पौधा सूख जाता है, और बाद में वही जो कीड़ा होता है वही फल के अंदर नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे पहले तो वो पहले पौधे को उतना आप काट भी सकते हैं, और जो खराब हुए फल है उनको भी आप अलग हटा दें, क्योंकि नहीं तो आगे चल के समस्या होगी, है ना, तो थोड़ी कटाई छटाई कर दें, नुकसान जो इल्ली ने पहुंचा है उन फलों को आप अलग कर दें, फिर इसके बाद आप इसको क्या करना है, इसमें आप नीम का तेल का छिड़काव कर दे, तो क्या होता है कि इल्ली जो होती है एक तितली होती है जो पौधों पर अंडे देती है, और उसमें से निकलने वाली छोटी इल्ली जो होती है वो पौधों को नुकसान पहुंचाती है, है ना, तना एवं फल छेदक इसे इल्ली बोलते हैं, तो उसके बाद नीम का तेल का 5 ml प्रति लीटर मान से आपको खेत में छिड़काव करना है, तो पहले तो खेत की साफ सफाई कर दीजिए, और ध्यान रखिएगा इस बार जहां पर आपने भटे लगाए और जो समस्या आई अगली बार वहां पर अगर गहरी जुताई का समय हो तो गहरी जुताई गर्मियों में कर दीजिएगा, और उस खेत को बदल कर अगली बार भटे दूसरे खेत में लगाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: तो उमाशंकर पटेल जी आपने टेली

0: फोन लगाया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हम जो है आज हमने जो विषय रखा है उद्यान की फसलों में सामिकार, और काफ़ी लगातार हमारे किसान भाई सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर विजय अग्रवाल जी आप विशेषज्ञ हैं, तो थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें कि कौन सी ऐसी बात छूट गई है आज जिसको हम कर लें इस समय, ताकि हमारे किसान भाई लाभ उठाएं उसका।
1: देखिए, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जैसे हम सब्जियों की फसलें लगा रहे हैं, और इस समय आपको ध्यान में रखना है कि फसलों में कहीं ना कहीं कीड़े बीमारी लगने की समस्या रहती है, तो जहाँ तक हो इनके लिए आप जैविक उपचार का प्रयोग करें। यानी बहुत समय क्या होता है, किसान भाई रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं, फिर वही सब्जियाँ बाजार में आ जाती हैं, तो उसका नुकसान मनुष्य शरीर पर नुकसान होता है। तो पहला तो आप जैविक उपचार जहां तक संभव हो वहां तक करिए, और इसके बाद आपकी जो भी फसल का उत्पादन हो रहा है, जैसे आपने टमाटर निकाले, बैंगन निकाले, गोभी निकाले, तो उनकी छटाई कर लीजिए। यानी मतलब आप आकार के हिसाब से, रंगों के हिसाब से ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करने की जरूरत है। खराब चीजें अलग रख दीजिए, जिससे बाजार में मूल्य अच्छा मिलता है। जहां तक संभव हो शाम के समय आपको फसल को तोड़ लें, उसकी छटाई कर लें, और उसके बाद आप बाजार में लेके जाएं। और जहां तक संभव हो आजकल क्रेट्स, प्लास्टिक की क्रेट्स आती हैं, उसमें आप स्टोर करके बाजार में ले जाएं, तो उससे भाव अच्छा मिलता है। तो उत्पादन ही नहीं करना, हमको जो उत्पादन का विपणन कैसे करना है, उसको कैसे साफ सुथरा करना है अपनी उपज को, जिससे उसका मूल्य अच्छा मिल सके, उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है।
0: सही बात है, और ये समय की जरूरत भी है कि हमारे किसान भाई जो है ग्रेडिंग जरूर करें, जो भी फल है या सब्जियां हैं, यदि अच्छे दाम लेने हैं तो। अच्छा, कभी कभी हमने देखा है हमारे कई किसान भाई जो है जो प्लास्टिक की बोरियां हैं उनमें सब्जियां रखते हैं, जो प्लास्टिक की पन्नियां हैं उनमें भर के रखते हैं और बांध देते हैं उसको, तो उससे तो नुकसान होता होगा।
1: उससे निश्चित रूप से, उसमें जब हवा नहीं लगेगी और उसमें से कुछ भी एक आध भी फल या सब्जियां सड़ी हुई रहती हैं, तो वो बाकियों को भी सड़ाने की सड़ाती हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे आलू हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, इसके लिए जो जालीदार लीनो बैग्स आते हैं, नेट बैग्स आते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बाकी सब्जियों में आप देखेंगे कि जो कैरेट्स होती है उनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको उपयुक्त चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए पैकिंग में या ट्रांसपोर्टेशन में, अन्यथा इससे क्या होगा कि नुकसान किसान भाइयों का होगा, क्योंकि उनको उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है।
0: बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों, यदि जो डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ने बातें बताई है इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके फल सब्जी हैं उनका भाव भी अच्छा मिलेगा, और वो लंबे समय तक बने भी रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। और कोशिश हमारी यही रहती है किसान भाइयों की, लगातार हम आपके टेलीफोन कॉल्स लेते रहें, हमारे विशेषज्ञ आपसे बातें करते रहें, लेकिन समय की अपनी पाबंदी होती है, तो समय को देखते हुए अब जो है डॉक्टर विजय अग्रवाल जी आपसे हम आपको धन्यवाद देंगे और विदा लेना चाहेंगे। आप यहाँ पर आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय था उद्यान की फसलों में सामिक कार्य, विशेषज्ञ थे डॉक्टर विजय अग्रवाल। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, प्रसारण सहयोगी प्रीति चौरसिया, उद्घोषक अभिषेक शर्मा। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया आर एस मीणा और राजू वासे ने। अब महेश सोनी को दिया गया नमस्कार।

0: मैं तो बुधवार को बाहर जा रहा हूँ और फिर अगले महीने लौटूंगा।
1: कहाँ जा रहा है तू?
0: इलाहाबाद।
1: इलाहाबाद?
0: हाँ माँ, वहाँ पर ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन हो रहा है ना, फिर वहाँ से हम लोग बेंगलोर जाएंगे, इसीलिए पूरे एक महीने के बाद ही लौट पाऊंगा।
1: कान खोलकर सुन ले, अब की बार मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। फिर इतनी उम्र हो गई है, कब तक मैं खाना बनाकर खिलाती रहूंगी तुझे?
0: चाहे कुछ भी हो जाए माँ, तेरे हाथ का खाना जितना स्वाद और दुलार भरा होता है ना, क्या किसी और के हाथ का हो सकता है?
1: बस बस, अच्छा अब मस्का मत लगा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गर्म करती हूँ।
0: अच्छा माँ।

0: क्या बात है सुधीर बाबू, आज सुबह सुबह आप पर इतनी जल्दी?
1: अरे बाबू, बात ही कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आता क्या कहूं और क्या ना करूं।
0: सुधीर, इस संसार में बहुत कम लोगों की किस्मत ऐसी होती है जिन्हें हर बात समझ आ सके। फिर हम मिडिल क्लास के लोग सारी उम्र सोचते रहते हैं पर समझ फिर भी नहीं आती और खत्म हो जाती है जिंदगी।
1: बड़े बाबू, मैं बहुत परेशान हूं और आप मेरी परेशानी को थोड़ा सा भी सीरियस लेने की कोशिश नहीं कर रहे।
0: परेशान होने से क्या फायदा, फिर वो देखो बाबू राम भी आ गया, जल्दी आ गया आज। भाई बाबू राम
2: जी आया सरकार।
3: जय राम जी की बड़े बाबू।
0: जय राम जी की, जय राम जी की।
2: आप दोनों है?
0: जल्दी आने की बात बाद में बताते हैं, पहले जाकर दो कप गर्मा गर्म चाय ले आ।
3: जी अभी लाया। और कुछ? अब मेरा मतलब कुछ खाने वाने को?
0: और कुछ नहीं, बस दो कप चाय, स्ट्रांग होनी चाहिए।
3: अरे बड़े बाबू, आप तो जानते ही हैं कि बाबू राम चाय हमेशा कड़क लाता है, अभी लाया।
0: हाँ तो सुधीर, क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? भाई अगर कुछ बताओगे नहीं कि समस्या क्या है, तब तक हम अपनी एक्सपर्ट राय कैसे दे सकते हैं, जल्दी कहो।
1: अब क्या कहूं बड़े बाबू, और क्या छुपाऊं? बात दरअसल ये है बड़े बाबू कि मेरी शादी तय हो गई है।
0: अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, बकरे की गर्दन कब तक छुरी से बचती रहेगी। ये तो खुशी की बात है कि तुम भी हमारी तरह गृहस्थी की चक्की पीसोगे।
1: लेकिन बड़े बाबू ये सब तो मुझे मंजूर है, लेकिन शादी की डेट मुझे सूट नहीं करती।
0: शादी की डेट सूट हो या ना हो, लड़की सूट करनी चाहिए, तुम्हें तो एकदम पार्टी का बंदोबस्त करना चाहिए।
1: बड़े बाबू आप क्यों मेरी परेशानी को और बढ़ाना चाहते हैं?
0: शादी की डेट को लेकर लगता है तुम्हारी वाकई ही तबीयत कुछ खराब है।
1: यही तो बात है बड़े बाबू। बड़े बाबू बात यह है कि कल दिल्ली से बड़े भैया का खत आया है।
0: अच्छा।
1: उन्होंने लिखा है कि इस महीने की 29 तारीख को शादी तय हो गई है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और जबकि मैं इधर अगले बुधवार को इलाहाबाद जा रहा हूँ ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन पर।
0: हाँ।
1: फिर घूम फिर कर पूरे एक महीने बाद ही लौटूंगा, ये भी तो आप जानते हैं ना।
0: बस इतनी सी बात ने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है?
1: बड़े बाबू आपके लिए तो ये सिर्फ इतनी सी बात है, पर मेरे लिए तो
0: इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो आज मंगलवार है।
1: हाँ?
0: आज ही एक अर्जेंट स्पीड पोस्ट से लेटर डाल दो।
1: लेटर
0: कल मिल जाएगा दिल्ली।
1: हाँ?
0: सैटरडे तक जवाब आ जाएगा, बस स्पीड पोस्ट से भेज दो।
1: अरे हाँ बड़े बाबू, ये तो आपने बिल्कुल सही सलाह दी, अभी लिखता हूँ लेटर।
0: बाबू राम जैसे ही चाय लेकर आए उसे दे देना, ये स्पीड पोस्ट में लेटर डाल आएगा।
1: हाँ।
0: कल उन्हें मिल जाएगी।
4: बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया।
1: माँ तू तो खामखा ही नाराज हो रही है, मैं शादी से इनकार थोड़े ही कर रहा हूँ।
4: इनकार नहीं कर रहा पर बहाने तो टाल मटोल के कर रहा है ना। तेरे लिए कंपटीशन में जाना जरूरी है पर शादी जरूरी नहीं।
1: माँ देख आज उन्हें लिखा है ना, कल भैया को मिलेगी चिट्ठी।

0: तो
1: एक दो दिन सलाह करने में लग जाएंगे और शनिवार तक भैया हमें वापस लिख देंगे। अब तो माँ उनकी चिट्ठी का इंतजार कर।
0: ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि आज तारीख तय कर लो कल बदल दो। फिर वहाँ लड़की वाले हैं, बार बार तारीख बदलेंगे तो क्या लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे?
1: माँ अभी से तो उनकी चिंता करने लगी और मैं जो ऑल इंडिया लेवल में नाम कमाने जा रहा हूँ मेरा कुछ नहीं।
0: बेटे, हर बेटे की माँ अपने बेटे को आगे बढ़ता देखना चाहती है, पर हर माँ का सपना उसकी औलाद होती है।
1: ओ माँ,
0: घर में बहू आ जाए तो मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कम से कम मेरे आखिरी दिनों में भगवान के लिए कुछ समय निकाल लेने दे।
1: ओ मेरी प्यारी माँ, तू तो नाहक ही परेशान हो रही है। देख देख माँ, मैं शादी से भाग नहीं रहा, बस कुछ ही दिन के लिए तो इसे आगे डाल रहा हूँ।
0: मैं तुझे क्या कहूँ बेटा, इतने सालों में जाकर योग बना है, अब भगवान जाने क्या होने को है।
1: माँ तुम परेशान नाहक हो रही हो, बस मेरी चिट्ठी के जवाब का इंतजार तो करो।
0: क्या कहूँ बेटा,

0: अरे सुधीर, आज भी आप जल्दी? भाई लगता है आप जाने से पहले अपनी सीट का सारा काम खत्म कर देना चाहते हैं। अच्छी बात है।
1: बड़े बाबू, ऐसी बात करके आप मेरे परेशानी को और मत बढ़ाइए प्लीज।
0: अच्छा, तो जनाब आज भी परेशान हैं? जरा हम भी तो सुने, आखिर कुंवारों को रोज रोज परेशान होने की क्या जरूरत है, और वो भी सुबह सुबह।
1: क्यों, क्या कुंवारे इंसान नहीं होते? उनका घर नहीं होता? उनकी उनकी कोई जरूरत नहीं होती?
0: तुम तो गुस्सा कर गए। मेरा तो मतलब सिर्फ बस यूं ही कह दिया। खैर, आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी की वजह बता सकते हैं, शायद मैं आपके काम आ सकूं पहले की ही तरह।
1: आप जानते हैं कि शादी की डेट बदलने के लिए मैंने पिछले हफ्ते स्पीड पोस्ट से दिल्ली को लेटर डाला था।
0: हाँ याद है, अब तो जवाब आ गया होगा। कहो नई कौन सी तारीख तय हुई?
1: आपको ये भी मालूम है कि मैं एक महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ?
0: हाँ हाँ, वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हारा LTC एडवांस का केस बनाया है।
1: और आपके कहने से मैंने चिट्ठी लिखकर बाबूराम को दे दी थी, उसे 15 रुपए भी दिए थे कि वो उस चिट्ठी को स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दे।
0: ये तो अच्छा ही किया जो स्पीड पोस्ट से भेज दी,
1: ताकि जल्दी जवाब आ सके।
0: बाबूराम चिट्ठी ले गया था क्या?
1: हाँ ले तो गया था।
0: बाबूराम ने जरूर डाली होगी, पर अब तक जवाब आ जाना चाहिए था।
1: यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अब तक जवाब क्यों नहीं आया।
0: एक मिनट, बाबूराम
2: जी। जी बड़े बाबू, आपने मुझे याद किया। बड़े बाबू
0: जी हाँ, आप ही को याद किया है। आपको पिछले हफ्ते दफ्तर का सामान लाने बाजार भेजा गया था सुबह सुबह।
2: जी हाँ, मैं लाया तो था सामान। क्या पूरा नहीं निकला बड़े बाबू?
0: उस दिन तुम भी सुबह जल्दी आए थे।
2: जी आया होऊंगा।
0: उस दिन मैं और सुधीर बाबू भी बहुत जल्दी आए थे।
2: आज ही हो सकता है।
0: तुम्हें आते ही हमने 2 कप चाय लाने के लिए भेज दिया था।
2: आज ही दफ्तर में सारा दिन चाय ही तो देता रहता हूँ, उस दिन सुबह ही धोने लग पड़ा होऊंगा।
0: चाय लाने के बाद तुम्हें बाजार के काम के लिए भेज दिया गया।
2: बड़े बाबू, आज फिर बाजार जाना है क्या?
0: उस दिन सुधीर ने तुम्हें एक चिट्ठी दी थी कि अर्जेंट है, ये बड़े डाकखाने जाकर स्पीड पोस्ट करा देना।
2: आदि हो सकता है।
0: वह चिट्ठी तुमने डाल दी थी या नहीं?
2: वो चिट्ठी, अजी वो चिट्ठी,
0: बोलो बोलो क्या हुआ उस चिट्ठी को? स्पीड पोस्ट से भेजनी थी, तुम्हें स्पीड पोस्ट के लिए 15 रुपए भी दिए थे।
2: उन 15 रुपए से मुझे चिट्ठी की बात याद आ गई।
1: जल्दी बताना क्या याद आ गया।
2: अजी साहब, मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ। जब मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा मेरी जेब में 15 रुपए फालतू कैसे हैं?
0: अरे वो फालतू कैसे हुए? स्पीड पोस्ट की टिकटों के लिए थे वो पैसे।
2: अजी साहब, मेरी पूरी बात तो सुन लो। अजी उस वक्त तो मेरे

0: दिमाग में यही आया ना कि मेरी जेब में 15 रुपए फालतू है।
1: बाप को बिना मतलब के बढ़ाता ही जा रहा है। हम तुमसे चिट्ठी की बात पूछ रहे हैं और तुम 15 रुपए की कहानी डालते जा रहे हो।
0: अरे साहब वही तो बताने जा रहा हूँ।
2: तुम बता कहाँ रहे हो, उल्टा पहेली बूझ रहे हो। जल्दी बता चिट्ठी का क्या हुआ।
3: साहब चिट्ठी की बात भी 15 रुपए से ही तो जुड़ी हुई है।
4: बड़े बाबू मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
1: एक तो मुझे चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ऊपर से ये बात का बतंगड़ बनाता जा रहा है।
0: साहब माफ करना, अगर आप मुझे बात बताने का मौका ही नहीं दोगे तो मैं पूरी बात कैसे कह पाऊंगा।
4: अबे जल्दी बता नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।
0: अरे साहब आप जानते ही हैं कि इस महंगाई में थोड़ी तनख्वाह वाले 15-20 रुपए किलो के आम कैसे खा सकते हैं। बच्चे रोज आम खाने की रट लगाए रहते थे। मैं जैसे ही मंडी में से गुजरा एक जगह 15 रुपए किलो के आम बिक रहे थे। उन फालतू 15 रुपए से मैंने 1 किलो आम खरीद लिए।
1: आम ले लिए।
0: 1 किलो में सिर्फ 4 आम चढ़े, चारों बच्चों के हिस्से के एक एक आया। हम मियां बीबी तो फिर भी आम खाए बिना रह गए। बड़े
4: बड़े बाबू मेरा दिल करता है कि इस बाबू राम के बच्चे का सिर फोड़ दूं।
1: हम कितनी देर से बकवास करते जा रहे हैं कि उस चिट्ठी का क्या हुआ, उस चिट्ठी का क्या हुआ, और उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा।
0: अरे साहब आप तो खाम खा गुस्से हो रहे हैं। साहब जी 15 रुपए की बात पूरी तरह से उस चिट्ठी के साथ जुड़ी हुई थी। अगर मुझे चिट्ठी का ध्यान आ जाता तो वो 15 रुपए मुझे क्यों फालतू लगते।
2: इसका मतलब सुधीर जी बाबू राम ने चिट्ठी पोस्ट नहीं की।
1: मुझे भी यही लगता है। तो बाबू राम वो चिट्ठी कहाँ फेंकी।
0: अजीब फेंकनी कहाँ थी, उस दिन के बाद इस पैंट को मैंने आज ही पहना है। वो चिट्ठी भी इस पैंट की जेब में पड़ी है।
1: माय गॉड
0: ये रही, मैं तो भूल ही गया था। खैर अब डालता हूँ जी, और बहुत ही अर्जेंट है तो सुधीर बाबू ये लीजिए, आप खुद ही डालाइए। और आप वो 15 रुपए तो मैं

अभी आप सुन रहे थे सुनील हेनरी अब्राहम की लिखी झलकी चिट्ठी, निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। ये झलकी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वाचलो पुन्हा भेट जम्बो जेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
3: विकास विषय है स्टार्टअप इंडिया योजना, योगदान आकाशवाणी गुना का है।

0: डगर विकास की कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम जानेंगे भारत सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो युवाओं से संबंधित है। यह है स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसे 16 जनवरी सन 2016 में लॉन्च किया गया था और जिसका उद्देश्य है देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना। गुना जिले में इस योजना पर क्या काम किया जा रहा है, आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हुए हमारे साथ हैं महाप्रबंधक उद्योग विभाग गुना श्री अमित कुमार शर्मा।
1: हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई एक पहल है, जिसका संचालन वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसके बारे में अगर हम कहें तो नवाचार, उद्यमिता और ऐसे युवा जिनके पास कई नए आइडियाज हैं, नए उत्पाद हैं, नई तकनीक है या किसी समस्या का नया समाधान है, ऐसे व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, पेटेंट, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसके लिए पात्र जो भी संस्था हैं या व्यक्ति हैं, वो अपने आइडियाज को DPIIT के अंतर्गत रिकॉग्नाइज कराता है
0: जी। अच्छा, यह योजना गुना जिले में कब से संचालित है?
1: वर्ष 2016 से ही संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया था और अभी वर्तमान में इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की भी एक स्टार्टअप पॉलिसी है, वो भी इसके साथ संचालित हो रही है
0: जी। अब एक बड़ा मन में प्रश्न ये उठ रहा है कि स्टार्टअप इंडिया योजना किन उद्देश्यों को लेकर प्रारंभ की गई?
1: देखिए, सरकार का ये मानना है कि हमारे देश में युवा जो है बहुमूल्य प्रतिभा का धनी है, तो निश्चित है कि उनके पास कई आइडियाज हैं, तो सरकार चाहती है कि लोग जो युवा है वो रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी हम नए उत्पाद कैसे बाजार में लेकर आए या हम नई तकनीक को कैसे विकसित करें या उनको आकर्षित करना या अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कैसे करें, इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो ये है।
0: अभी बातचीत में एक अच्छी बात निकली कि युवा रोजगार देने वाले बने
1: जी,
0: तो इसमें कौन कौन से ऐसे उद्यम आ सकते हैं जिनको कि हमारे युवा प्रारंभ कर सकते हैं?
1: किसी भी प्रकार का आइडिया जो सरकार कहती है कि अभी जैसे गुना में बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, तो गुना में भी हमने एक तेजस वर्कशॉप की। तेजस वर्कशॉप भारत के कुछ चुनिंदा जिलों के लिए या चुनिंदा शहरों के लिए आयोजित हुई थी। उसके तहत क्या था कि जो युवा है जो महानगर में निवास कर रहा है, उसके पास तो कई संसाधन है कि वो जानकारी एकत्रित कर सकता है, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनके पास आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन वो उनको वो मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है कि वो किस तरीके से अपने आइडियाज को धरातल पर लेकर आए या उसको किस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ाएं, तो उसी के लिए तेजस वर्कशॉप आयोजित की गई थी। तो इसमें जितने भी आपके आइडियाज हैं जो इससे पूर्व किसी ने नहीं सोचे, या हम अपने रोजगार को कैसे गति दें, अगर हम छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं तो उसको कैसे विकसित करें, या हम कौन सी नई तकनीक का प्रयोग करें, इसी के लिए ये संचालित की जा रही है।
0: अच्छा, हमारे मन में एक विचार ये आ रहा है कि जैसे अगर कोई युवा है और उसको लगता है कि मुझे अपना एक संगीत विद्यालय डालना है
1: जी,
0: है ना, या कोई शैक्षिक स्कूल डालना है
1: जी,
0: तो क्या वो भी उद्यम इसके अंतर्गत आता है?
1: जी, हम कोई भी व्यक्ति जिसके पास सेवा क्षेत्र का या विनिर्माण क्षेत्र का उसके पास कुछ नया करने के लिए है, या जो है उसको वो बेहतर करने के लिए उसके पास कुछ नई तकनीकी है या नए टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है, लेकिन उसको सिर्फ हमें DPIIT के माध्यम से रिकॉग्नाइज कराना अनिवार्य होगा।
0: अच्छा, एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया है, क्या एकल व्यक्ति के द्वारा संचालित कोई उपक्रम इसमें आएगा या संगठन है वही इसका लाभ ले सकते हैं?
1: नहीं, इसके लिए एकल व्यक्ति भी हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, ये सभी के लिए, सभी लोग इसके लिए पात्र हैं।
0: जी जी, वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जैसे कि रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं
1: जी,
0: या वीडियोग्राफी से रिलेटेड भी बहुत सारे काम है जहां बड़े पैमाने पर वीडियो से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं, तो क्या वो भी इस योजना का लाभ ले सकते?
1: इसके लिए उनको नई तकनीक पर काम करना होगा। हम जो लंबे समय से तकनीक लेके चले आ रहे हैं उसको बदलते हुए हमें कुछ नया लाना होगा, तो ऐसा, और उसके बाद हम अपने जो नई तकनीकी प्रयोग की या

0: हमने अधिक से अधिक उसमें रोजगारों के अवसर बढ़ाए, क्योंकि नई तकनीक जब आती है तो निश्चित है कि हमें चीजें परिवर्तन करनी होती है, और उससे अधिक रोजगार जब अवसर उत्पन्न होते हैं तो हम इसका रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज करा के इसको हम स्टार्टअप की श्रेणी में ला सकते हैं।
1: और अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो विभाग है इस योजना के संचालन को किस तरह से करता है।
0: देखिए, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप योजना का संचालन एमएसएमई विभाग यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। तो सरकार, जो सरकार का उद्देश्य है वो केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें हम इनक्यूबेटर की सहायताएं, मेंटर, इन्वेस्टर और उनको मार्केट तक कैसे आना है, मार्केट तक वो अपने प्रोडक्ट को कैसे लेकर आए, उस पर सरकार पूरा काम कर रही है
1: जी। अब मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, या क्या पात्रताएं हैं, क्या नियम, क्या शर्तें हैं इस योजना के लाभ उठाने के लिए
0: जी। ऐसा कोई भी नया उद्यम जो किसी प्रोडक्ट, सर्विस अथवा प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उसको वो बढ़ा रहा है और जिससे रोजगार और व्यवसाय की बढ़ाने की क्षमता भी उसके अंदर जागृत हो रही हो, वह स्टार्टअप इंडिया के तहत मान्यता के लिए पात्र हो सकता है। ये हम बिल्कुल कंफर्म इस चीज को मान सकते हैं, और लेकिन उसको सिर्फ अपना डीपीआईआईटी के तहत रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा
1: जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये और जानना चाहेंगे कि जो डीपीआईआई के तहत आप रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है,
0: जी जी जी,
1: किस तरह से उसमें रजिस्ट्रेशन कराना,
0: उसके लिए
1: कहाँ जाना होगा, कौन सी ये संस्था है, कृपया बताएं
0: जी। औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन विभाग भारत सरकार का एक विभाग है, उसके पोर्टल पर जाकर हम वांछित दस्तावेज उसमें जो चाहे गए हैं उनको उस पर अपलोड करेंगे तो हम वहाँ उसके लिए आवेदन कर सकते हैं
1: जी।
0: एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद उपरांत ही हम ये सारी चीजों के लिए पात्र हो जाते हैं। सरकार से जितने भी हमें लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो सभी एक स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होने के बाद ही होंगे
1: जी। और इस बीच अब हमारे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि इस योजना से जुड़ने के लिए क्या है आवेदन की प्रक्रिया।
0: कोई भी व्यक्ति स्वयं इसका आवेदन कर सकता है और ऑनलाइन प्रक्रिया है, भारत सरकार का जो पोर्टल है उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसके लिए किसी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है और सरकार ने इसके लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया हुआ है
1: जी।
0: तो आप सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं।
1: और अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे गुना जिले में इस योजना से अभी तक लाभान्वितों की संख्या क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जो लाभान्वित हैं उन्होंने किस किस कार्य के लिए ये लाभ लिया है
0: जी। डीपीआईआईटी के रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम देखें तो अभी वर्तमान तक गुना में 211 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, जो जिले के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब हम पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 6000 है, जिसमें से 211 सिर्फ गुना जिले में रजिस्टर्ड हैं। अभी वर्तमान में कुल 14 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको EIR के तहत लाभ दिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी जो 2025 लागू हुई है उसके तहत ऐसे स्टार्टअप जो अभी प्रारंभिक स्टेज पे रिकॉग्नाइज हो गए हैं लेकिन वो प्रारंभिक स्टेज पे अभी चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है, हमारे पास आइडियाज तो लोगों के पास होते हैं लेकिन उन्हें हम धरातल पे जब लाने का सोचते हैं तो सबसे पहली समस्या होती है फंडिंग, कि हम उसके लिए पैसा कहाँ से लाएं, उसको हमें काम करना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। EIR के तहत हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद उसमें अगर आपका रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है तो आपको 10,000 रुपए प्रति माह एक वर्ष तक दिया जाता है, जिससे कि आप अपने स्टार्टअप को गति दे सकते हैं
1: जी।
0: तो अभी 211 कुल स्टार्टअप्स गुना जिले में पंजीकृत हैं, जिसमें से 14 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको EIR का लाभ मिल रहा है, और कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 6000 लोग स्टार्टअप के तहत रजिस्टर्ड हैं
1: जी।
0: सबसे पहले तो मैं सभी श्रोतागणों को यही कहूंगा कि आप स्टार्टअप के संबंध में आपके जिले में हर जगह सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि आप तक वो जानकारियां समय समय पर सही समुचित रूप से पहुंचे, तो उसके लिए आप सभी कार्यशालाएं या जो भी सेमिनार हो रहे हैं या जिला व्यापार उद्योग केंद्र के माध्यम से आप जानकारी एकत्रित करें और अपने आइडियाज को धरातल पर लाने के लिए प्रयास करें, जिससे सरकार भी आपको वो इकोसिस्टम तैयार करके दे रही है कि उन आइडियाज को हम धरातल पर ला सकें। हमारे देश का ये युवा है वो रोजगार मांगने वाला ना होते हुए वो रोजगार देने वाला बने, यही

0: कहना चाहूंगा।
1: जी
0: साथियों, स्टार्टअप इंडिया योजना के कुछ हितग्राहियों से हमने बातचीत की और उन्होंने हमें बताया।
2: मेरा नाम आशुतोष धाकड़ है, मैं रुठियाई से निवास करता हूं। मैंने स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है उसका बेनिफिट मार्च के टाइम पे लिया है। जब मैंने मोहन यादव जी का भाषण जनवरी में उन्होंने मीटिंग की थी, उसमें मैंने सुना कि स्टार्टअप इंडिया एक जो प्रोग्राम है इसके तरह गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो मैंने भी इस योजना का लाभ लिया है और अभी मुझे फंडिंग आना स्टार्ट हो गई है। इस योजना से मैं बहुत लाभान्वित हो रहा हूँ, मेरे को हेल्प मिल रही है अपने स्टार्टअप में, क्योंकि इस योजना से गवर्नमेंट मुझे फंडिंग कर रही है। और इनिशियली जब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था तब मेरे पास 16 वर्कर्स थे, आज के टाइम पे मेरे पास 26 वर्कर्स हैं, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इस योजना के लिए मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार का, और हम आगे बढ़ रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। और मेरे जैसे युवाओं के साथ साथ और भी जो युवा हैं इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है।
3: मेरा नाम मनमोहन सिंह यादव है, मैं ग्राम कनारी ब्लॉक बमोरी और डिस्ट्रिक्ट गुना का रहने वाला हूँ। हमारा एक स्टार्टअप है महाकाल स्टार वेंचर के नाम से, और उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट की स्कीम थी स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की, उसके बारे में हमें उद्योग विभाग से जानकारी मिली, तो उन्होंने कहा कि इसमें आप कुछ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाह रही है इसकी में, इसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारा भोपाल में एक वहाँ से भी कॉल आया, उनने हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया मेल पे, हमसे वापस से डॉक्यूमेंट मांगे सभी, उनको वेरिफिकेशन करने के बाद में हमारा जो EIR का जो स्टैम्प मिलता है सरकार से MP गवर्नमेंट से, वो 10,000 रुपये महीना आना शुरू हो गया है। हमारा अभी स्टार्टिंग में तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित काम है और हम सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि टेंडर डालते हैं हम गेल इंडिया लिमिटेड में, उसके द्वारा हम सर्विस देते हैं और मशीनरी लगती है वो भी हम ये प्रोवाइड कराते हैं। इस योजना का लाभ लेने के बाद हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, इससे हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है।
0: आज के अंक में हमने जाना भारत सरकार की एक योजना स्टार्टअप इंडिया के बारे में। साथियों, अगले अंक में एक नई योजना पर विस्तृत जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और

0: शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गाना आशिकी 2 से लिया है हमने। इसे गाया है श्रेया घोषाल ने, गीत संदीप नाथ का है, संगीत अंकित तिवारी का।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते।

0: महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए

0: जा रहे हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपए का इनाम घोषित किया था।
2: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
3: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
4: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
3: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और

0: सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
1: सूर्यकरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
2: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

महेश भट्ट, फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहाँ मिला नहीं ज़्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम की किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मेरे भाग्य ठीक थे। जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन ख़त्म हो जाए तो बाहर आके ज़रा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहाँ एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था। उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट। और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति। उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी, विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धक्के खाए यहाँ वहाँ, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए। मंजिलें और भी शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई, फ्लॉप हो गई। नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाने अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी। विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाई डे एक राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years wasted।

उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था रजनीश, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई अर्थ।

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो यह आदमी जिसकी ऑब्चुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद दिस फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं, तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी कियोस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किस्से कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विथ सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और कास्ट जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान सा अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजर

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूँ, मानता रहा हूँ। और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड्स मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

राजेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथा वस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई राज 3। लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब वक्त है समाचारों का। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: सुनी समाचार के साथ मैं पुनीम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे

0: सब गवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इंपैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Gargin 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." A Naxal commander carrying a bounty of 30 lakh rupees has been killed in an encounter with the Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Brijesh Ganju alias Gopal Singh Bokta was the chief of Jharkhand's banned extremist outfit, the Tritiya Prastuti Committee. A highly wanted fugitive, Ganju had been absconding for nearly 2 decades and was facing more than 50 criminal cases, including murder, kidnapping, extortion and targeted attacks on security forces. The Electoral Registration Officer of Delhi Cant Assembly constituency has clarified the details, facts and documents furnished by election

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।